0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। International Yoga Day 2026 is being celebrated across the globe today. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga is being held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. The national celebration is underway at Red Road, witnessing participation of thousands of yoga enthusiasts at the venue, while millions of citizens are expected to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. More from our correspondent.
2: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event will begin at 7:30 in the morning at Garrison Ground in Sadar. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG re-examination, will be conducted this afternoon. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The examination will be held from 2 p.m. to 5:15 p.m. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all system jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. The NTA said that it is fully prepared for the smooth, fair, transparent conduct of the examination. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, has said that three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz yesterday and are en route to India. These oil tankers are Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald. In a social media post, Mr. Sonowal said that under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government is working on highest priority to secure India's maritime interests. Prime Minister Narendra Modi will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems.

0: प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
3: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
4: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में

0: मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आरएन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অব জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আরএন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত

0: अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. Sathiyo, Gita mein Bhagwan Krishna ne योग के विषय में कहा है, युक्त आ कल्याण विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
3: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
2: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
3: हम सब
2: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
2: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की. विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है. और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं.
4: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है. मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है.
2: जी,
4: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है. और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं. और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं.
2: जी,
4: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है. क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक, वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है, उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है.
2: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया. हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है. ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
4: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से.
2: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं.
1: Guruji, Munish Sharma ji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
5: Yes, actually asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं. तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है. मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है. और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो.
2: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में.
5: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना. अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं. इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना. जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है. इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं. तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना. हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर. जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है. फिर उसका प्रेजेंस हमारी टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है. आप चलते फिरते, उठते बैठते, आप योगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्सियसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्सियसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
2: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
4: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
2: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
4: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
2: जी।
4: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
2: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूँगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
5: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
2: जी,
5: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
2: जी।
5: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यूटर्न होता है, यूटर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यूटर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
2: जी। Yes, और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है, और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
4: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
2: जी।
4: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
2: Jee.
1: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, And the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
2: Ji, yahan par abhi पाद हस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
4: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
2: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
4: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है।
2: जी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
1: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
2: Ji, bilkul. Aur ye jo asan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
4: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
2: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
2: जी, और and now about this asana, अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा, सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
4: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये
2: जी। और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है, और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: And now I think the enthusiasts are performing vakrasan. So
2: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
4: बिल्कुल सही है कि ये हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
2: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
4: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
2: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन, उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
4: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है। और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
2: जी।
4: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
2: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
4: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
2: जी।
4: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है, और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
2: जी। गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
5: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है आज वो।

0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम,
1: जी
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है।
1: जी
0: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है। सेतु बंधासन,
1: जी सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक, कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है, यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्धहलासन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके अर्धहल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर। और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं, शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
0: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये,
1: जी
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु
1: जी
0: विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन
1: जी
0: सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
1: जी
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप
1: जी
2: कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखरा बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपाल भाति। कपाल मतलब

0: मस्तिष्क प्रदेश ब्रेन रीजन, और भाती मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशिनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और
1: जी
0: योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो
1: जी
0: कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो
1: जी
0: योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन
1: जी
0: सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है।
1: जी
0: प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा
1: जी
0: करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा।
1: जी
0: मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी
1: जी
0: कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेत, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला
1: जी
0: प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा,
1: जी
0: उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही,
1: जी जठराग्नि को पूरी तरह से
0: व्यवस्थित
1: नियंत्रित कर
0: करता
1: देता है।
0: है।
1: जी और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है,
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये,
1: जी
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो सी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सिक्रीशन प्रॉपर करता है,
1: जी
0: ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
0: बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए।
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं। जी,
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind. क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
1: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जा आना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है।
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना,
4: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर।
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है,
4: और धीरे
1: इसकी
4: धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
2: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai, to humne namaskar kiya hai aur saath hi yoga abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jin mein jahan jahan Bharatiya dutawas hain, unki or se vishesh ayojan honge. Aur ab kyunki bahut sare desh duniya ke yog ko apna चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है. तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें.
2: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड. एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
3: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें. एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं. जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे. अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी. कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं. आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस. मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं. मैं एक दृष्टा हूं. द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है. आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है. जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है. फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला ये सारी चीज एक हो जाती है, फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डली लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं, 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने

0: श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है, तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप, वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: পশ্চিমবঙ্গর কলকাতার রেড রোডত অনুষ্ঠিত দ্বাদশ আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস।
3: আকাশবাণী নগাঁও ইমানপুরে 12তম আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগ দিবসর রাষ্ট্রীয় উদযাপনের পোনপটীয়া সম্প্রচার আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রের পর আমার কেন্দ্রে রিলে করে শুনালে। এতিয়া 8 বজাত সমাচার প্রভাত, 8:15 মর্নিং নিউজ, 8:30 গীতি মালিকা আর 9 বজাত পুয়ার আঞ্চলিক বাতরি ক্রমে আকাশবাণী দিল্লি আর আকাশবাণী গুয়াহাটি কেন্দ্রের পর আমার কেন্দ্রে রিলে করে শুনাবো।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्म कुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट। नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
4: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
1: धन्यवाद फरहत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: নমস্কাৰ, আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰ দিনৰ 11 বজাৰ মুখ্য বাতৰিৰ সৈতে মই অৰূপ কুমাৰ শৰ্মা। দেশ বিদেশত আজি দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি পুৱা পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ ৰেড ৰোডত দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অংশ লয়। ৰাজ্যত যোগ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট উদ্যানত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ভাগ লয়। বাহ্যিক সাহায্যপ্ৰাপ্ত প্ৰকল্পসমূহে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নত ৰূপান্তৰকাৰী ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰকাশ কৰিছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ পৰীক্ষা নীট ইউ জি 2026 আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। দেশৰ 551খন আৰু বিদেশৰ 14খন চহৰত হ'বলগীয়া এই পৰীক্ষাত 22,79,000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। ইউৰোপীয় সংঘই অসম ভ্ৰমণৰ ওপৰত আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয়ত কাইলৈৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। কাইলৈ নিশা 9:08:42 অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অহা 7 দিনত ৰাজ্যৰ ঠাই বিশেষে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি আগলি বতৰি দিছে। এই সময়ছোৱাত নামনি অসম, মধ্য অসম, উজনি অসম আৰু বৰাক উপত্যকাত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপত আজি ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি খেলখন সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি বুলেটিন দুপৰীয়া 12:05 শুনিবলৈ পাব।
1: व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते।
2: हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे
1: जी, जी।
2: और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है।
1: वो संगीत शिक्षक थे असल में, वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे। और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि जो पैसे उन्हें देने होते हैं उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते थे।
2: क्या बात है, देखिए कहां कहां कैसे कैसे संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहां पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहां संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं।
1: और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे, शाह परिवार, वहां बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे।
2: हाँ।
1: जी, पूरा माहौल ऐसा था कि गणेश उत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहां हुआ करते थे। और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे, वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए। और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया था, उसका नाम था क्लेवियोलाइन। और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी
2: जी जी,
1: और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं।
2: हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का प्रयोग किया है और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई है।
1: बिल्कुल, और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को
2: जी जी,
1: और फिर उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का, और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त।
2: और क्या ही मीठे गीत सुनके हैं। तो श्रोताओं, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीरजी शाह की, उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया। और मुझे लगता है ये समय आ गया है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओं, कल्याण जी वीरजी शाह जी को हम याद कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम विविधा में 30 जून उनका जन्म दिवस है, तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है। श्रोताओं, संगीतकार कल्याण जी वीरजी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं, और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने।
3: सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी, उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
4: शॉर्ट में कहूँगा कि वो क्लेविलिन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था, उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई। और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझते नहीं, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही मेरे पिया को ना दसी हो रही। उसके बाद ये सुन के वो मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने, वो नागिन पीछे बन रही थी उसके लिए मुझे बुलाया गया, और फिर उसमें नागिन बीन बजाई मैंने। और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि कल्याण जी कुछ भी बोलो मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना। आज भी हम याद करते हैं, सही लता जी ने कहा था उसे।

0: करण जी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए।
1: लता जी के बारे में कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला, तो वहाँ भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ, इससे ज़्यादा वर्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वही गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुना था ऐसा लगता है कि ज़रा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं अभी कुछ कम रह गया, कम रह, बस यही बस इनकी खूबी, ऐसे आगे कुछ नहीं।

0: कलंजी भाई, स्टेज प्रोग्राम्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं। एक खास बात यह भी रही है कि उसमें सभी स्टार्स, सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं। तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें।
1: एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी कल्याण जी विजयन पार्टी, तो उसमें काफ़ी शो करते थे हम। मतलब उसमें क्या, उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे, वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई, उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ भी। लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो जाए उस टाइम। फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करना, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फिनेंशियल, तो उनके जो एडवाइज़र था वो बोले किशोर दा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोलते तो बोले नहीं, स्टेज के ऊपर मैं जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे, एक दिन मैंने समझाया उनको, किशोर दा आप क्यों डर रहे, मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो 7 जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे बार पॉइंट अच्छा अच्छा है, फिर से बोलो मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हो तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने, ये तो बेचारे ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खा लिया, आपके इतने फैन है कि यार एक दो दफे बोलते रहो बहुत अच्छा यार, मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा, ऐसे करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो ऐसे मास्टर हो गए कि ओ आप बिलीव नहीं कर सकते, उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए, उनके प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, तो योडलिंग उन्होंने निकाली, मतलब योडलिंग, तो हम लोग बैठे हुए कोई प्लान बने थे, मतलब किशोर दा एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बोले तो मेरे किशोर दा आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया आया। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे भी, तो बाद में क्या हुआ मैं अच्छा हो गया, फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को माँ कुछ। तो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज़ निकलती है हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोर दा अभी वो आवाज़ निकाली आप, इतने अच्छे आप बात कह रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मैं कैसे मारेंगे इतने ऑडियंस के बीच में, मैं आपको मारूँ ऐसे। तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूँगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैं ऐसा एक जोर से एक ऐसे लाफा मारा, तो उन्होंने दौड़ करके और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज़ निकल के उन्होंने गाना शुरू किया, बस इस टाइम।

हो झुम झुम झुम झुम झुमरो पकड़ घुम बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन

0: से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए।
1: कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाते हैं और उनकी क्या खुशी हुई है, वहीं हमें अवार्ड मिल जाता है। बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज किया कि नहीं किया उसमें नहीं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है, तो हम इस संगीत के जरिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, बस यही है। फिर आप अगर मजा की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, तो हमें कोरा कागज़ के लिए मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था, 25 साल कुछ 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था। तो वहाँ पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है आप, तो मतलब भाई बहुत खुशी हो रही है, क्यों नहीं खुशी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है।
0: कल्याण जी भाई, इस तरह के जो जोक्स हैं, जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है, आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ, कि वो क्या कि जहाँ हम जाएँ कोई लोग हंसते नहीं हो सब है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी ओशो, उन्होंने मुझे बोला था कि कल्याण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए, वो कमाल का आर्ट है, बिल्कुल अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट है प्रीचिंग ना लगे इसलिए मैं आपसे काफ़ी चीज़ें एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने ह्यूमर की क्लासेज भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाई, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का पिक्चर साइन की थी नन्ना फरिश्ता, तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास, तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये, और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है बस, दिस इज द बेस्ट आखे पिक्चर में, वो लोरी बहुत काउंट करती है, लोरी लोरी लोरी बहुत अच्छी कल्याण जी भाई बस बनाना बना। तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डनरी गाने में लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे, सवाल ही नहीं। तो इतना बड़ा लाफ्टर आया, वो बोले वो क्या समझे नहीं, बाद में उनको समझाएगा कि हम सही हो।

0: रमेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज्यादा गाने गवाए हैं, बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं।
1: मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है, बस ये इनकी एक खूबी थी, तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन हिंगोरानी की पिक्चर, दिल भी दे।

0: कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा।
1: मुझे लगता है कि रफ़ी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। रफ़ी जी वॉज ए ऑलराउंडर आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए आप, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और सिंगर ढूंढ, बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही।

0: कल्याण जी भाई, कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो?
1: कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको जरूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूजिक का सब्जेक्ट रहा, तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के सी रामचंद्र, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मदन मोहन, उन्होंने अच्छा किया। शंकर जयकिशन, उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था। संजीव चौधरी, अनिल विश्वास, ये सब हैं। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज़्यादा में ज़्यादा किसने इंस्पायर, तो मैं एस डी बर्मन को बहुत मानता। काहे के लिए कि एक 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है। तो उसमें ऐसा एक एटमोसफियर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया है, ये बनाया, वो बहुत मुश्किल है। और वो बनाते थे तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया गया इन्होंने, कि अगर कोई सीने के बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु, उनका जो अपने स्टाइल से गाया है वो सुना, ये बहुत मजा आया।

0: कल्याण जी भाई, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख, विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए?
1: फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया, उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आन जी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हो, लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो उतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो, फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता, तभी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में क्या है कि मैं देखा हूँ बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़े बड़ा शो है, क्योंकि तीन पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये तीन पीढ़ियाँ एक ही, और वो तीन घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहाँ से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही एक खूबी है।
0: बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप सुनवाएं श्रोताओं को जो आप ही का कंपोजिशन हो और बच्चों के लिए हो। जो गाना
1: बजाइए, एक बट्टा दो, दो बट्टी चार, कालीचरण में था, जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और वो मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे।

0: आनंद जी भाई, संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है, तो आपकी जिंदगी की फिलॉसफी, जिंदगी का फलसफा क्या है, हमें बताइए।
1: अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज़्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी उसको ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की ज़रूरत कुछ ज़्यादा नहीं है, और वो ज़रूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज़ है वो बांटना। ऐसा होना पैसा काम कर रख के बैठे हुए कुछ बड़े, वो बात हमें अभी भी माइंड में है बिल्कुल।

0: मनीषा जी, इस रिकॉर्डिंग को सुन करके कैसा अलग सा आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से इसको अनुभव कर रहे होंगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। और संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो इंसान के मन मस्तिष्क को शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। बहुत परेशान अगर कोई इंसान है, डिप्रेशन में है, तो वो एक मधुर संगीत सुन के आनंदित हो उठता है, और अगर आनंद में है तो उसका आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: संगीत का सौंदर्य जिन कलाकारों को ये गुण मिला है, जिनको माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है, वो वाकई बहुत पुण्यात्मा होंगे जिन पर ये आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, और वो हैं राहुल देव बर्मन।
0: वाह क्या बात है।
1: जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना शुरुआत में,
0: वर्सेटाइल, वैविध्यतापूर्ण कलाकार।
1: जी हाँ जी। और आपको नहीं लगता जयंत जी की राहुल देव बर्मन जी की संगीत की जो विशेषता है ना, वो ये है कि वो नित युवा संगीत है हमेशा।
0: जी,
1: आज
0: जी।
1: तक भी जो आज की जो नई पीढ़ी है वो भी आरडी बर्मन के संगीत को लेकर उतनी ही उत्साही है जितनी पुरानी पीढ़ी थी, या 60, 70 और 80 के दशक में उस संगीत को जितना पसंद किया उस पीढ़ी ने, उतना ही पसंद आज की पीढ़ी भी कर रही है।
0: और विविधता ये जो शब्द है इसको सार्थक किया है आरडी बर्मन के संगीत ने।
1: जी हाँ,
0: आप उनका पहला गाना ले लीजिए या उनका आखिरी गीत कंपोजिशन ले लीजिए।
1: जी हाँ? एक लंबा दौर आरडी बर्मन साहब का रहा संगीत में, और पहला गीत जिसका जिक्र भी जयंत जी कर रहे हैं, छोटे नवाब का गीत,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जो उनकी पहली फिल्म थी, घर आ जाए घिर आए बदरा सावरिया,
0: रोंगटे खड़े हो गए।
1: जी हाँ, शास्त्रीय संगीत की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सर्वाधिक प्रयोग धर्मी संगीतकार भी राहुल देव बर्मन रहे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। न केवल संगीत रचनाओं में जिस तरह के वाद्य इस्तेमाल किए जाते थे, वो कई बार ऐसे वाद्य होते थे जो लोक गीतों में हमें सुनाई देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: या कई बार नए तरह का वाद्य वो बनाते थे, यानी कि बाल्टी में किसी यंत्र को डुबा करके और उसमें से आवाज निकालना, लोहे की किसी चीज को पानी में डुबा करके उससे आवाज निकालना, ऐसे कई प्रयोग उन्होंने किए।
1: बहुत इनोवेटिव जिसे कहा
0: जी,
1: जाता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: बहुत नए नए प्रयोग करने वाले आरडी बर्मन साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल देव बर्मन संगीत नहीं रचते थे, संगीत का एक अनुष्ठान करते थे, और उस अनुष्ठान का जो उद्यापन है वो हुआ था 1942 अ लव स्टोरी के साथ।
0: वाह वाह।
1: जो उनकी आखिरी फिल्म थी। जयंत जी,
0: जी
1: एक ऐसे प्रयोग धर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिनका जन्मदिन 27 जून को सभी संगीत प्रेमियों ने मनाया, और अभी तक उसका असर हम सबके दिलो दिमाग पर है।
0: जी जी
1: श्रोताओ।

0: आरडी बर्मन साहब के बारे में हम जब इतनी बातें कर रहे हैं तब आपका ध्यान जरूर इस बात पर आकृष्ट हुआ होगा कि हम किस कार्यक्रम को अब आपको सुनवाने जा रहे हैं, तो आप शायद बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मुझे जयंत जी के चेहरे से भी लग रहा है कि वो समझ गए। तो श्रोताओं, हमने जो आज ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए चुनी है, ये एक लंबी श्रृंखला है विविध भारती की, और इसकी प्रोड्यूसर छाया गांगुली जी हैं, जो खुद एक बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी कलाकार। और छाया जी का तो ये उपकार है कि उन्होंने तीन महान कलाकारों को एक साथ विविध भारती
1: जी, यही विशेषता इस श्रृंखला की है। हाँ। कि आर डी बर्मन साहब के संगीत पर केंद्रित हैं, मगर उनसे बातें जो कर रहे हैं वो भी महान कलाकार है।
0: जी हाँ।
1: आशा जी और गुलजार साहब।
0: जी हाँ। और जब इन तीनों कलाकारों का एक कुंभ होता है तो ये कार्यक्रम बन के निकलता है, और वो है मेरी संगीत यात्रा, जो सीरीज विविध भारती की बहुत पॉपुलर सीरीज है। श्रोताओं, आप आज जो सुनेंगे ना, उसमें हम तीन अंक उसके प्रसारित करेंगे। तो पहला जो अंक है उस बारे में आप बताइए।
1: जी मनीषा जी, पहला हिस्सा जो है उसमें आरडी साहब ने अपनी पहले फिल्म की यानी छोटे नवाब के संगीत की बात की है,
0: तो पहले उसी हिस्से को सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
1: जी जी।
2: मेरा पहला गाना गुलजार छोटे नवाब फिल्म का था, और उसमें पहला गाना जो है दीदी मतलब लता जी खुद गाई थी, और उस गाने के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है।
3: अच्छा।
2: ऐसा है कि पुराने चावल जैसा होता है, बहुत घमंडी होते हैं सब।
3: अच्छा।
2: तो मेरे पिताजी भी बहुत घमंडी थे, दोनों का कुछ अनबन हो गया था और दोनों कुछ बोलचाल बंद हो गया था।
3: अच्छा अच्छा। कट्टी हो गई थी।
2: कट्टी हो गई थी। और दीदी गा नहीं रही थी पिताजी के लिए, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी और से गवाएंगे। तो कुछ दिन तक गाना उनके बगैर ही हुआ। तो मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये मेरा पहला गाना है तो आपको गाने पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं गाऊंगी, कौन सी डेट है बताओ। तो डेट फिक्स करके बताया। तो उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था।
3: अच्छा।
2: मतलब दो या तीन लता भाई जैसे आर्टिस्ट ही है, आशा बोलो कोई भी हो, रफी साहब बोलो, लेकिन आजकल दुर्भाग्य है कि आजकल
3: रस्म
2: नहीं है। तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए, और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी। उन्होंने कहा कि पिताजी से नहीं मिलाओगे, तो मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने आवाज दी, दादा अंदर आइए।
3: रूठे हुए थे।
2: पिताजी आए आके बोला, लता कितना डेट दे सकते हो तुम मुझे, वो ऐसे बात करते थे। और आपको जितना डेट चाहिए, एक महीना का चाहिए, ले लीजिए। तो उसके बाद हमारा गाना तो हुआ ही, पहला गाना हुआ घर आजा घिरा। और उसके बाद से फिर पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया।
3: अच्छा,
2: और गाने गाए बहुत सारे पिक्चर।
4: एक बात मैं आपसे पूछूं?
2: बिल्कुल,
4: सच बताने का।
2: हाँ बताइए।
4: जब आपने लता मंगेशकर को
2: जी
4: पहले रिहर्सल के लिए
2: ये कुछ
4: गाना शुरू किया,
2: घिराव करके मेरे तरफ आ रहे,
4: तब आप अंदर से कांप रहे थे?
2: बिल्कुल कांप रहे थे। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए, पहले जब उनको मिला, मैं मेरे ख्याल से 1950-51 में मिला, वो ठंडी हवाएं करके एक गाना था, उसके रिकॉर्डिंग में मिला।
3: अच्छा।
2: एंड शी वाज सो सिंपल, मतलब लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, क्या है नहीं है। लेकिन जब मेरा पहला गाना गाया तो मेरा बहुत मेरा भाग ही चमक।
3: क्या बोल कैसे उस गाने के,
2: घर आजा घिर आए।

0: ये तो शुरुआत हुई आर डी साहब की, और उसके बाद
1: अब उसके बाद मैं उस गीत की बात करना चाहूंगी जिसे हमारे जो श्रोता है वो दीवानों की तरह चाहते हैं, और उसमें आर डी बर्मन साहब ने ऐसा संगीत दिया है और ऐसा मधुर गीत है, आप समझ रहे हैं, जिसमें वो रेल लगातार चल रही है रेलगाड़ी, और उसके साथ जी हाँ फिल्म किताब का वो एक जबरदस्त गीत है स्वयं आर डी बर्मन साहब की आवाज में। आइए वो गीत कैसे बना, उस गीत से जुड़ी यादें क्या थी, इसको सुनते हैं। आर डी बर्मन साहब के साथ गुलजार जी हैं और हैं आशा जी।
2: आप सबको तो गवाते हैं
3: जी,
2: जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं, कहते आज नहीं गाऊंगा मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नर्सों गाता हूँ, अच्छा छोड़ दे तू भी मत गा आज, कल करते हैं परसों करते हैं,
4: बिल्कुल इसी गाना तरह की हरकत है। आशा जी वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी, मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है
2: जी,
4: मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन के, जिस तरह से आपने एक गाना है इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है, ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ। वो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है,
3: धनों
4: की आंखों में,
3: इसका
4: वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता ये
2: ज़्यादा बेटर है।
4: उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से,
2: उसमें एक गिटार का जो पीस है डारा डारा डारा डारा डारा,
4: वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे।
3: ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग,
4: अच्छा
3: तो वो मैंने सुना और सुनने का मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज अ कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा, तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए, वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है, लेकिन लोग खराब तरीके से
4: यूज, मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट
2: वही था, वही
4: और तो कुछ भी नहीं
2: था। उसी के ऊपर
3: कैसा गा रहे थे हम,
2: क्या
3: चलिए गाना सुन के

0: साहब का जो गीत श्रोताओं ने इस कड़ी में सुना। मनीषा जी, आरडी साहब की प्रयोग धर्मिता यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम बात करेंगे उनके एक नॉन फिल्म एल्बम की। आशा भोसले, गुलजार साहब और आरडी बर्मन ने मिलकर के ये एल्बम बनाया था, दिल पड़ोसी है।
1: और दिल पड़ोसी है दरअसल हमारी भी दिल के बहुत पड़ोस में रहता है, बल्कि हम तो कहते हैं कि दिल में ही रहता है। इतना सुंदर एल्बम है, क्या बताएं, इसको तो जितनी बार सुना जाए उतनी बार।
0: इस एल्बम के दो वॉल्यूम है, जितने भी गाने हैं हर गाना अलग है, हटके है। उस गाने का रिदम पैटर्न देख लीजिए, अलग है
1: जी। तो आज कौन से वाले गीत का जिक्र है जिसकी कड़ी हम सुनवा रहे हैं?
0: जी जी, इसमें गुलजार साहब का लिखा हुआ वो गाना है जिसमें बांसुरी की बात है।
1: अच्छा।
0: बांसुरी को एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना।
1: क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर कड़ी है इस श्रृंखला की। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं।
2: गाना।
3: हाँ, मैं यही कहने वाली थी।
2: कौन सा गाना?
3: सातों बार बोले बंसी।
2: हाँ। इसके बारे में तो गुलजार बताए।
4: सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना। तन की लागी सारी बोले, मन की लागी बोले ना। ये गाने में खास बात ये है कि बांसुरी को टोटल परसोनिफाई करके देखिए आप।
2: कैसे?
4: जितनी फूंक तन पे लगती है उतनी बोलती है, अंदर की बात नहीं बताती। सुर उसके साथ हैं, सातों बोलते हैं। जो चुप रहती है जिस बात पे वो नहीं बोलती। उसमें खूबसूरत बात सिर्फ ये है कि उसे परसोनिफाई करके देखिए किस तरह से वो उठ के कृष्ण के मुंह लगती है, मुंह लगी हुई है, मुंह चढ़ी हुई है, और वो सारी बात कहती है। एक जो उसका अपनापन है, जो अपने पास रखती, वो चुप है, चुप नहीं बोलती। वो सात सुरों के अलावा है। उसके सारी इलिटरेशन जितनी है वो बांसुरी के साथ परसोनिफाई करके देखिए आप।
2: ये गाने में थोड़ा सा लयकारी भी किया था, सरगम भी किए थे, बड़ा अच्छा था मतलब।
3: और इसमें एक बहुत अच्छी थी कि बांसुरी साथ में बोल रही है और आवाज भी आ रही है।
4: हाँ।
3: तो समझ नहीं आता कि बांसुरी बोल रही है कि राधा।

0: क्या बात है, प्रीत की पीड़ा जाने मुई छाती छेद पड़े।
1: क्या बात है,
0: उठ उठ के फिर मुंह लगती है कान्हा संग लड़े। बांसुरी की इस बात को सुन करके मनीषा जी
1: कुछ और सुनने का मन रहता है क्या?
0: जी लगता है इसी अनुभूति के साथ रह जाएं।
1: जी हाँ, तो अब हम यहीं रह जाते हैं श्रोताओं, आपके साथ इन्हीं स्मृतियों में हम भी खोए हुए हैं और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। इसी तरह के मधुर कार्यक्रमों को लेकर एक बार फिर हम लौटेंगे। अभी इस वक्त तो दीजिए अपनी मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर को इजाजत। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: साहिर लुधियानवी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वासना फिल्म का ये गीत।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अक्सर जयपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई शंकर जय किशन ने। और श्रोताओं, इस गीत के पहले आपने संगम फिल्म का गीत सुना था, उस गीत में भी तर्ज थी शंकर जय किशन की। इस वक्त आप सुन रहे थे शिकार फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

संवाद भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। विविध भारती की सुर लहरियों की खनक आ चुकी है श्रोताओं आपके आंगन में लेकर सुरीला सफर, जहां हम और आप मिलकर गीत संगीत का ये सफर तय करते हैं। तो आज भी थोड़े खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजरेगा ये सफर, सुरीला सफर। हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने पढ़ी ली है आज की इबारत टेक्स्ट और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। तो हमारे रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर आज का ये टेक्स्ट या इबारत कह लें पढ़ देते हैं। राजस्थान की वो मखमली रात, रेत में पानी सी लहर, चांदनी ने चंदा से कहा, केसरिया बालम थाने नैना में रमा लूं, चल मेला देखूंगी, सोना चांदी मीनाकारी के जेवर सब खरीदूं, पहनी माथे की रखड़ी सात रंग की चुनर, तो देख बींद ने कहा खूब लगती हो, लगे होरी आई है, जहां जहां मैं जाती हूँ गुड़िया गुलाबी पत्थरों महलों की अटारी ऊंट की सवारी सब जैसे नैनों में बादल, सच इनके बिना जी न लगे, पीतल की गगरी नारी हाथ न लगाना पानी का मोल जानती भी है। बींद बोला अरे बींदनी अरे दिले नादान, ये आरजुओं का शहर है, जो आएगा वही समझ पाएगा। तो श्रोताओं ये थी आज की इबारत या कह लें टेक्स्ट। रेगिस्तान की बेशुमार खूबसूरती को अपनी आगोश में समेटे प्रांत राजस्थान ने श्रोताओं जहां ऐतिहासिक धरोहरों को समेटा है, वहीं यहां लगते मेले, यहां की लोक संस्कृति कला और सुंदर वन्य जीव राजस्थान के कुंदन हार की तरह हैं। तो आज राजस्थान की बातें, रेत की बातें, जी हां, जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो नमक का रेगिस्तान भी है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये किन अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोताओं। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं आज की जो ये इबारत है उसके विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी की सौंधी महक लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की मधुर चुवन को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए है चांदनी, केसरिया आलम, रंग बिरंगी चुनर, मीनाकारी के गहने और रेगिस्तान की मखमली रात मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो लोक रंग स्वयं शब्दों में उतर आया हो। बींद और बींदनी का सहज संवाद केवल प्रेम नहीं बल्कि उस जीवन दर्शन को भी व्यक्त करता है जहाँ पानी की हर बूंद, हर परंपरा और हर भावना अनमोल है। ये इबारत राजस्थान की गलियों, महलों और रेत के धोरों के बीच ले जाकर प्रेम, संस्कृति और स्मृतियों के रंगों से सराबोर कर देती है। जी हाँ, और इनके बारे में आपको लिखना भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश हमें रेगिस्तानी रेत के टीलों की ओर ले जाएगा और उसके मखमली स्पर्श को अनुभूत कराएगा। रेगिस्तान का सर्द आसमान, मखमली रेत और उस पर चांदनी की चादर ओढ़े थिरकते पानी की लहरें, ये किसी सम्मोहन से कम नहीं। चांदी से चमकती रेत के टीलों के बीच बनी पानी की लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई मखमली कविता लिखती हो। रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही मखमली। रात के सन्नाटे में जब पूर्ण चंद्रमा की किरणें पानी की सतह पर पड़ती हैं तो पानी की हर एक लहर मोती से चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो रेतीले समंदर में सितारों की बारात उतर आई हो। क्या ही बात है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि रेत की जो सुंदरता है और रात जो राजस्थान की होती है, रेत की रातें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। इस बारे में हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं, और अगर ऐसा कोई अनुभव आपके पास है, आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ के बारे में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। और रात के ही बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेगिस्तान में मखमली रात एक रहस्यमय मौन, साइलेंस ऑफ डिवाइन के रूप में है जहां सांसारिक कोलाहल शांत हो जाता है, जो प्रकृति के शांत, कोमल और निश्चल रूप को दर्शाता है। रेत पर पानी की लहर, हवा द्वारा बनाई गई लहरें, ईश्वर की इच्छा डिवाइन विंड के बहाव का एक रूप है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से बहते रहने की प्रेरणा देता है। ये दोनों वाक्यांश एक संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का मन रेगिस्तान की मखमली रात की तरह शांत होना चाहिए और रेत पर पानी की लहरों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रेत कठोरता और लहर तरलता का मिलना जुलना द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाता है।

बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है। डोर फिल्म का ये गीत था करसम सरगतिया और मीर अली हुसैन की ये रचना थी, सलीम सुलेमान का संगीत था। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज के गीतों को पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हमें राजस्थान के रेगिस्तान की सैर आज की इबारत करा रही है, तो गीत भी उसी के अनुसार होंगे। चांदनी ने चंदा से कहा, तू चंदा में चांदनी की सरिया बालम पिया तो से नैना लागे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं पीतल की मुरी गागरी, और भी कुछ गीत इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं, पहचाने हैं। एक और श्रोता ने दिले नादा ये गीत पहचाना है। एक और श्रोता है सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये गीत सुरीले सफर में हो सकता है शामिल। एक श्रोता और लिखते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर घूमने गया। सचमुच राजस्थान की खूबसूरती अपनी समृद्ध संस्कृति, रेगिस्तान और शाही आभूषण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार जैसलमेर मखमली रेत का अनुभव होता है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की किरणें इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं तो ये भी सोने चांदी की तरह चमक उठती हैं। केसरिया रंग राजस्थान के शौर्य, त्याग और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों जैसे साफा, लहरिया और बंधेज में इस रंग का प्रयोग होता है। राजस्थानी आभूषण अपनी बारीकी, नक्काशी और भारी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर से लेकर पैर तक चांदी और सोने के गहने पहनती हैं, जिनमें रखड़ी, माथा, गला, बाजूबंद और भारी पायल प्रमुख हैं। ऐसे चांदनी रातों और मखमली रेतों पर ऊँटों की सवारी करने का अलग कौतूहल है। तो क्या आपने ऊँटों की सवारी की है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आइए चलिए मित्रों, चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, और आज दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा के गीत की धूम होगी। तो जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत होते हैं। वैसे गीत की जहाँ तक बात होती है तो कविताएं भी याद आती हैं। चेतक कविता क्या आपको याद है और ये किस पर लिखी गई थी तो आप ज़रूर बताएं। और कौन कौन से किले आपने देखे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किस की रचना थी। वैसे तर्ज थी SN त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थीं, और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोताओं, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा। ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे। शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी भी जीता नहीं जा सका, या फिर इस पे अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहाँ पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की इबारत में मेरे रंगीलो राजस्थान की महिमा का खूब बखान किया गया है। तो आप सब पधारो मारे धोरा रोर देश राजस्थान में। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, परिधान, खान पान और वहाँ की भाषा बहुत मीठी है। व्यंजन में चूरमा बाटी, गट्टे की सब्जी और कैर सेंगरी की भाजी का क्या कहना। मारो राजस्थान सबसे निरालो, जयपुर की चुनरी का क्या कहना, ऐसा है मारा राजस्थान। धोरा की धरती, अब तो प्रकृति भी यहाँ खूब मेघ बरसा रही है। और गीत को भी इन्होंने चुना है, तू चंदा मैं चांदनी, पीतल की गागरी। एक और श्रोता लिखते हैं, कहते हैं जीवन में एक बार जरूर कश्मीर जाना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार राजस्थान भी जाना चाहिए। मैंने भी सपरिवार एक बार राजस्थान के दर्शन किए हैं, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। खास तौर पर मुझे राजस्थान की रेत के दर्शन करने थे, और कई वर्षों की इच्छा पूर्ति हुई। जैसलमेर में समुद्र में जहाज पर चलते समय जिस तरह चारों ओर पानी ही पानी दिखता है, वैसे ही यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत दिखती है। एक नया अनुभव प्राप्त होता है, रेत पर जीप से घूमा जाता है, घूमते हुए इक्का दुक्का घर भी दिखते हैं। मैंने जीप रुकवाकर एक घर के अंदर जाकर उन लोगों के रहन सहन, भोजन इत्यादि के बारे में जाना। जी हाँ, और इन्होंने आगे भी बहुत लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत सुनना, संगीत को महसूस करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी एक ही

किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है और किसी दूसरे के लिए एक याद या भावना या एक कहानी की तरह होती है। आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोता और फिल्म।

संध्या और प्रशांत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी सेहरा, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गादास का, आपसे गीतकार पूछा था, जी हाँ आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना, श्रोता लिखती हैं कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ की रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहाँ के पकवान, घेवर, मावा, कचौरी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मजा लिया था। जी हाँ, आपने रंग बिरंगे बाजार की बात की है श्रोताओं, तो राजस्थान में आप क्या बता सकते हैं मीना बाजार कहाँ लगता है, तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं, हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में। वहाँ का तापमान, पानी का स्वाद, तीखे भोजन की विविधताएं, अनोखी वेशभूषा, रेगिस्तान की गर्म रेत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मन मस्तिष्क में अंकित है, जिसमें मुख्यतः चौमुंडा देवी मंदिर, पुष्कर नाथ, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। जी हाँ, यहाँ कौन सा मेला लगता है ये अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है। मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकीले पत्थर अब तक सहेज कर रखे हैं। जी हाँ, आपने लाए होंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, घूमर कलबीलिया नृत्य, भवाई नृत्य राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य, और दाल बाटी चूरमा, खेर सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भी बहुत से लोकप्रिय व्यंजन हैं यहाँ के। जी हाँ, तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि रेगिस्तान में मीलों तक फैले रेत के टीले जिसे धूर कहा जाता है के साथ साथ चट्टानी पथरीले मैदान भी शामिल हैं। थार में कई खारे पानी की झील भी है। सब आप ही बता दे रहे हैं श्रोताओं, तो फिर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है ये भी आप बता दीजिए, जिसमें, जी हाँ इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि राजस्थान का सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमर है, इसे नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कलबेलिया, तहताली, भवाई और गैर। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमर है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हालांकि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भी प्रचलित हैं।

शुदा एक दुल्हनिया हैं जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

की मुरी घाघरी और मंगवा दे, और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहाँ के लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाए। जी हाँ, लोकल ड्रेस जा सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें ज़रूर लिखें और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा। जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है, महिलाएं आज भी हाथों में सफ़ेद चूड़ियाँ पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति।

आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोता, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहां स्थित है या

शर्मा फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमति और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

0: فوزیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا جانصار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی. اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا. اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے یہ عمارت ہے ہوا محل, جس نام پر ہمارے ویوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے. اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت راون ہتھا. جی ہاں, آج کا سریلا سفر کاریکرم آپ سمپن ہو رہا.
1: The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness. Leads the national observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata. Says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across the country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecast extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India have set a target of 378 runs for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A series in Dambulla, where Suryavanshi smashes fastest half century of List A format in just 11 balls. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue.
2: Yoga keval hamare sharirik swasthya par hi focus nahi karta. Yoga manasik swasthya se sharirik swasthya ka marg dikhata hai. Isliye योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है. यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है.
1: Highlighting the International Yoga Day theme for the year, Yoga for Healthy Aging, Mr. Modi said that yoga is not just a physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit.
2: When we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us.
1: President Draupadi Murmu also performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh today. A large number of public representatives, officials and citizens were present at the event. Addressing the event, the President said, "Yoga is a celebration of India's great tradition and it has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life."
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग. ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है. आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan also performed yoga at the Spituk Stadium in Leh, Ladakh, along with hundreds of participants. He emphasized that yoga is a lifelong investment in one's health, well-being and character.
4: The International Day of Yoga is more than a celebration of physical exercise. It is a recognition of ancient gift from Bharat to the humanity. We are specially proud that the global recognition of yoga, Honorable Prime Minister Sriman Narendra Modi ji has called upon the international community to adopt a day for yoga.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla today participated in a collective yoga practice organized in the Parliament House complex in New Delhi. Mr. Birla said that the ancient Indian tradition of yoga is today showing the entire world the path to a healthy, balanced and harmonious life. Defence Minister Rajnath Singh also participated in Yoga Day celebrations at the Eastern Air Command headquarters in Upper Shillong, Meghalaya. He urged everyone to make yoga an integral part of their routine. The International Day of Yoga was also celebrated with devotion and enthusiasm across Maharashtra. Governor Jishnu Dev Verma joined senior officers of the Indian Coast Guard in performing yoga at Lok Bhavan, while Chief Minister Devendra Fadnavis led the event organized at Juhu Beach. Here is more from our Mumbai correspondent.
5: Addressing the gathering, Chief Minister Devendra Fadnavis said that yoga is a panacea for preventing lifestyle-related diseases and that everyone should practice it regularly to stay healthy. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal participated in a yoga session in Borivali. Union Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Kharse performed yoga at an event organized by the Sports Authority of India in Mumbai. Minister of State for Social Justice and Empowerment Ramdas Athavale practiced yoga at Mumbai's Priyadarshini Park. Institutions such as IIT Bombay, the Mumbai Port Authority and the National Thermal Power Corporation's Western Region 1 headquarters in Mumbai also observed the 12th International Day of Yoga. Various programs were organized across Maharashtra to mark the occasion. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
1: In Punjab, Border Security Force celebrated the Yoga Day at the Atari Wagha Joint Checkpost JCP in Amritsar, Kartarpur Sahib Corridor in Gurdaspur, JCP Husainiwala at Ferozpur and JCP Sadki on Fazilka border, besides other units and headquarters in the state. BJP National President Nitin Naveen also participated in the yoga session at Lovely Professional University near Jalandhar. All states and union territories across the nation joined the Yoga Day celebrations with grand events and yoga sessions. The International Day of Yoga celebrations were seen across the globe today. More than 2,000 yoga enthusiasts from the Indian community and other expatriate groups came together in Doha to celebrate the day, underscoring the growing popularity of the ancient practice in Qatar. The Embassy of India in Muscat also marked the Yoga Day with a special event at its premises, bringing together members of the diplomatic community, the Indian diaspora, Friends of India, and yoga enthusiasts from across Oman. Bangladesh also marked the Yoga Day with a grand celebration in Dhaka, organized by the Indira Gandhi Cultural Center, IGCC, under the High Commission of India in Bangladesh. Hundreds of yoga enthusiasts gathered to participate in the Common Yoga Protocol session led by yoga teachers and students of the IGCC. Earlier, more than 500 participants gathered in Riyadh yesterday to celebrate Yoga Day, highlighting the growing popularity of yoga in Saudi Arabia and its role in promoting health and family and well-being. Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है नई क्षमता तैयार कर रहा है नई कनेक्टिविटी बना रहा है नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है
1: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers. But today, India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace. He says special steps are being taken to enhance domestic defense production capacity.
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और साथियों एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है
1: Defense Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download News on AIR app. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is currently underway at over 5,000 centres across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates amid tight security. The examination is being conducted in English and 12 Indian languages. The NTA has said that student-friendly facilities are being provided at centres, including drinking water, ORS, ambulances and shaded waiting areas for parents. Ahead of the examination, the National Testing Agency conducted nationwide mock drill yesterday to verify all systems jammers, CCTV, frisking staff and biometrics. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan has assured that all necessary arrangements were already made for the smooth conduct of the exam. President Draupadi Murmu today attended the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University in Jabalpur, Madhya Pradesh. On the occasion, she awarded gold medals to meritorious students from different faculties. Madhya Pradesh Governor and Chancellor Mangubhai Patel, Chief Minister Dr. Mohan Yadav and Higher Education Minister Inder Singh Parmar were also present at the ceremony. Addressing the gathering, the President said that Rani Durgavati, after whom the university is named, was a symbol of courage, bravery and valour. She urged people associated with the university to work for the empowerment of tribal communities, disadvantaged groups, especially young girls.
6: रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें
1: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Binab 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness. leads the nation's observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
7: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
8: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
7: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
9: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
7: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
5: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
7: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
7: नौसेना के अनुसार इन 3 पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
10: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
7: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
11: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
7: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
11: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
7: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
12: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
7: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति वार्ता के

0: लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: बिहारी के बोलों को सुर में ढला ओपी नैयर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओ हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा। हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्जी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, एस डी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और इस गीत के पहले श्रोताओं परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलिल चौधरी का संगीत था। सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।
3: आकाशवाणी गुवाहाटी, एटियार बातरीर सहित मैं जिंती राणी डेका।

शोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़ खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्रे इस गीत को सुनना चाहते थे, अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से, और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोता, इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाहा बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी की बोल थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्बल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार, नसीन परवीन, रोजी बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहेगी।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल धानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाहा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी ने, और इस गीत के लिए शहदुल शहल से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
1: जुडू।
2: यस सर।
1: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
2: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
1: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
2: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
1: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज दो, अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
2: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही, बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
1: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी, इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चल एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
2: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला। वाह, बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों, यू ब्लैकी रास्कल, उस सांप को हम जॉन्सबर्ग ट्रेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जिडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
2: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मोलाइज, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी। कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।

0: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
0: नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
3: बोलिए बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना, ये तो बेहोश हो गया। लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है, होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।
4: ओके सर।

0: ना ना जिनी, तू मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गर्म करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते हो। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेल, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम है मिसेस मोलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलेस क्या फरमा रही हैं?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
4: अच्छा मान लीजिए, अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलेस?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: ओह यस यस यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं। खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
5: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
2: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
2: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
1: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
1: जिनी पैराम्बा।
2: क्या करती हो?
1: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
3: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
1: कहीं सड़क बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
2: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
3: हाँ। वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों, गई थी ना?
2: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
1: जी हाँ चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।

0: पर क्या तुम ये जानते हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
1: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
1: जी, मेरी?
2: अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
0: प्लीज मिसेस मुलायर। जिनी, तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
1: आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
2: नहीं, वो क्यों जाएगी?
0: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
1: मैं कहां जाऊंगी?
3: मेरे साथ?
2: नहीं
3: सर, मैं ये कह रहा
0: हूं। जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ, देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
2: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी, तुम अंदर जाओ।
0: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
3: सर, मैं कह रहा था कि
0: जिडू, जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
1: नहीं,
0: इट्स माय ऑर्डर।
1: मौसी, नहीं, छोड़ दो मुझे।

0: है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओ के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओ के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न, और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? ओह नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: जिनी?
1: जी हाँ, जिनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं? धन्यवाद
1: मिस्टर मोलाज। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी?
1: ये जिनी को यहां क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहां?
2: तुम कैसे हो वेंच?
1: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूं जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
2: वेंच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
1: इसे इसे यहां क्यों लाए हैं? कहिए कहिए, क्यों लाए हैं इसे यहां?
3: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
1: नहीं मालूम।
3: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
2: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
1: जी,
3: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
2: बेंच, ओ बेंच,
1: जी
2: बचाओ।
1: जी,
2: बेंच,
1: जी,
2: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
1: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी का क्या कसूर है? उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उसे क्यों लेकर आए हैं बताइए।
3: सिर्फ लेकर ही नहीं आए,
4: अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
3: हाँ, बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
1: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं।
3: वजह से
1: मिस्टर थॉमसन,
3: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
1: मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन,

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेयेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेज, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलाइज?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलाइज, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद, आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की मां ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: ने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ। उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच?
1: कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

18 अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया।

0: सौ से मिसेस मुलाय सब कुछ खत्म हो चुका है। बेंजामिन अब सिर्फ एक लाश भर है।
1: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो।

0: सचमुच मैं बहुत दुखी, लाश देने का ऑर्डर नहीं
1: है। ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, वो मेरा खून है, उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है। मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब।
0: Really? We are sorry.
1: बहन जी अपनी कविता की कापियां भी सुन ले दादा, बहन ये सारी कापियां ले दादा, ये ले सब ले जा।
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: নমস্কাৰ, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এই ঘণ্টাৰ বাতৰিৰ সৈতে মই জিন্তি ৰাণী ডেকা। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ পৰীক্ষা নীট UG 2026 আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হৈছে। অসমতো মুঠ 87টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। দেশ বিদেশত আজি দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। দেশৰ আন বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো আজি যোগ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয়ত কাইলৈৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে পৰহিলৈ পুৱা 11 বজাত হাইস্কুল শিক্ষান্ত কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা 2026ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে 5টা মূল নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বুলি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে ব্যক্ত কৰিছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তত্বাৱধানত 2018 চনত ডিফুৰ ৰং কিমিত স্থাপন হোৱা কাৰ্বি ভাষা আৰু সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ ৱেবছাইট কালি মুকলি কৰে। বিশ্ব মটৰচাইকেল দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেশৰ আন বিভিন্ন স্থানৰ লগতে ধেমাজিতো আজি সুকীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি কানাডাৰ টৰণ্টোত অনুষ্ঠিত এখন খেলত জাৰ্মানীয়ে আইভৰি কষ্টক 2-1 গ'লত পৰাস্ত কৰি নকআউট পৰ্যায়ত স্থান নিশ্চিত কৰে। আৰু ইংলেণ্ডত চলি থকা ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি মানচেষ্টাৰত হ'বলগীয়া খেলত ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। এই ঘণ্টাৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি বুলেটিন বিয়লি 5:15 শুনিবলৈ পাব।
1: कार मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और उजाली उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी 2 शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी। और सबसे ज़रूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है। मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे। और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
2: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्या नगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी, उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी, हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी। और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड,
0: हाँ। और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए,
0: राइट।
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है, वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया, लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या तो प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं।
0: ओके।
1: हाँ, उतना सा खुलभर दुधाची कहानी। सो उतने से दूध की ये कहानी है।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है? राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूं। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई आते ये जो 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है वो उस विश्वास की वजह से है।
0: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। उनकी बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही। पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
1: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
0: जी।
1: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणि बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस होती थी। ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
0: बहुत सही,
1: ठीक है,
0: बहुत ही सही।
1: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर
2: इमान पड़े श्रोता सकले विविध भारती अनुष्ठान समूह शुनिले एफ एम बेन्डर 102.7 মেগাহার্জত এয়া আকাশবাণী নগাঁও। শ্রোতালৈ প্রীতি সম্ভাষণ জনাই মুকলি করছো আজির বিয়লির অধিবেশন। স্টুডিওত এয়া মই নিবেদিতা গায়ন। পুনতে আগবাইছো যুবক যুবতীসকলৰ উদ্দেশ্যে প্রচার করা অনুষ্ঠান যুব তৰংগ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का

0: का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata.

0: है मुलाकातों का ये मौसम, तेरी आंखों में डूब जाने का मौसम, रंगों में सिमटी हुई तू जब आती है मेरे सामने, तो कायनात में बिखर जाता है बहारों का मौसम। और जब दिल की वीरानियां तेरे ख्यालों से गुलजार होती हैं, तो बहुत भाता है तेरी यादों का मौसम। मेरे इश्क के तमाम रंगों को ओढ़कर जब तू आती है
1: का मौसम।

दिन के उजालों में एक तेरा चेहरा ही नजर आता है सभी नजारों में। हर तरफ यही अफसाने हैं कि हम तेरी अदाओं के दीवाने हैं। कभी काली घटा को ओढ़कर दिन में तू निकलती है, तो कभी झिल मिलाती हुई शब में तू चांदनी सी बिखरती है। वो तेरे पैरहन के अंदाज, वो तेरे हुस्न के जलवे, तेरे कदमों पर सिर झुकाकर चांद भी करता है तेरे सजदे। बेनूर सी है मेरी जिंदगी तेरे बिना, करता हूं मोहब्बत तुझसे मैं बेपनाह।

सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशां के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूं या चांद हो तुम हूबहू।

0: আকাশবাণী গুৱাহাটী কথিকাৰ অনুষ্ঠানত এতিয়া শুনক হিৰেণ মেধিৰ কথিকা দেৱী কামাখ্যা আৰু অম্বুবাচী। সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ অসমত উদযাপিত হোৱা অম্বুবাচী অনুষ্ঠানটো এটা ঋতুকালীন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কামাখ্যা কামৰূপ কিয়? ইয়াৰ মূল উৎসটোৱেই হৈছে কামাখ্যা দেৱীৰ কামৰূপত অৱস্থানৰ বিষয়বস্তুটো। কালিকা পুৰাণ অনুসাৰে দক্ষযজ্ঞত দেৱী সতীয়ে স্বামী সদাশিৱৰ নিন্দা সহিব নোৱাৰি যজ্ঞস্থলীতে প্ৰাণ আহুতি দিছিল। এই বাতৰি পাই শিৱই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কৰে। ইয়াৰ পাছত শিৱই সতীৰ দেহ কান্ধত তুলি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰে। শিৱ অবিহনে জগত অসাৰ। অৱশেষত জগতৰ কল্যাণৰ অৰ্থে ভগৱান বিষ্ণুৱে
1: ভাগৱত সিং ৰাৱত জো হমে বতাতে ৰহেংগে ক্যা ক্যা স্কোর ইস ম্যাচ মে বন ৰহা হ্যায়। ওভার টু ইউ কৃষ্ণ কুমার জি।
2: ইয়া থ্যাংক ইউ এন্ড গুড ইভিনিং অল লিসনার্স অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। A very, very, very important game, this in the ICC T20 Women's World Cup. As important as you may probably want it to be, because remember that India and South Africa also played a bilateral recently, and also the ODI World Cup final, which India won. Here's the first ball. And Smithy starts off beautifully. Off the pads, it's been whipped away. Should get a couple for that, and India are on their way of the very first delivery, 2 for the loss. Now, in the context of this World Cup, also, this is a very, very important game, because India won both their games. Should India win over here, they get into the driver's seat, and a lovely, confident-looking stroke on the onside off her pads by Smriti Mandhana. It's a kind of a bread-and-butter shot for her, and that went down to mid-wicket for a couple. Once again, on the middle and leg, played defensively forward by Smriti. On the onside, no runs result. Now, it'll be interesting to see how India really approach this innings, because the power play is going to be very important, and they would certainly want to have a good start with a very good power play and then build it on from there on, because South Africa is a very good batting side, and they can really give it a good chase, a good total. Marizand Cup. Outside the off stump, flowing off drive. Good stop there at mid-off, inside the 30-yard, and no runs result. So after a couple of the very first delivery, two dots here from Marizand Cup. And as I was saying, you know, South Africa, we want to win over here. Remember, they lost to Australia, and they lost by big margins. So if they lose again over here, they'll have a major problem in this tournament from here on. They've got Netherlands to play. They can beat them by a big margin, but Bangladesh are no pushovers, so it will be very difficult for South Africa from there on. Once again, played on the onside for a single to the ball in the leg and middle stumps from Marizand Cup. And so it's so important, this game, that both the teams want to win and push forward for a place in the semi-final.
1: बात आपकी बिल्कुल ठीक है केके, क्योंकि ये मैच ऐसा मैच है जिसे हम आप क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो अपना स्थान सेमीफाइनल में पूरा करने के लिए बहुत करीबी करीबी पहुंच जाएगी। और स्मृति और शिफाली की इस जोड़ी से भारतीय टीम को बहुत उम्मीदें हैं। शिफाली वर्मा पहली बार सामना करती हुई मैरिजन कैप का, चार गेंदें अभी तक फेंकी गई हैं और इन चार गेंदों में भारत ने 3 रन बनाए हैं। मैरिजन कैप अपनी फील्ड को कुछ एडजस्ट करती हुई, बट क्योंकि एक बात बहुत जरूरी जो है कि ये जो ओपनिंग स्टैंड है हमारा भारतीय टीम का, इस पूरी भारतीय टीम का जो बेस है इस ओपनिंग स्टैंड से बनने वाला है।
2: या आई मीन इट बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ शेफाली गोज अबाउट दिस। शी लाइक्स टू हिट इट ओवर द टॉप। Yes, Marizand Cap into Shefali Verma. That's a good ball on the off and middle. And driven into the covers, a half push, half drive. And a good stop there by Laura Wolfhard. But they get a couple for that. So Shefali Verma also, in the very first delivery, on her way to an India 5-0 loss. The first over, just the one delivery still to come from Marizand Cup. So controlled over here by Marizand Cup. Also interesting to see that 5 deliveries, Marizand Cup hasn't given the ball too much pace, because she knows that pace on the bat, and Shefali Verma will go after her if it's a length ball. Here is Marizand Cup into Shefali Verma on the pads. Once again, turn around the corner. That might well carry down to the boundary. The first 4 of the match coming up down to the square leg boundary for 4.
3: ये लगा आभा का
1: और शेफाली वर्मा के बल्ले से ये चार रन जो निकल कर बाहर गया और इस चौके के साथ इस मैच का पहला चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकला और भारत ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बनाए हैं और अच्छी शुरुआत। हालांकि जो गेंद थी वो ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई थी और ये आखिरी गेंद सिर्फ लेग स्टंप को छोड़ती हुई और उसे हल्का सा दिशा भर दी शेफाली वर्मा ने और गेंद सीमा रेखा को छोड़कर बाहर जाती हुई और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में भारत का स्कोर रहा 9 रन बिना किसी नुकसान पर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये जो वुमेन्स टूर्नामेंट हो रहा है इसमें जो पॉइंट टेबल है ए ग्रुप में उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक 3 मैच खेल चुका है और तीन मैचों से 6 अंक अर्जित कर चुका है। भारत ने 2 मैच खेले, आज भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैच तीसरा मैच वो खेल रहे हैं। बांग्लादेश ने 3 मैच खेले हैं, 4 अंक उन्होंने अर्जित किए। साउथ अफ्रीका का ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा मैच और पाकिस्तान और नीदरलैंड्स भी 3-3 मैच खेल चुके हैं। इस्माइल अपने नए ओवर के साथ सामना करती हुई स्मृति मांदना, अच्छी गेंद थी, कवर्स पर उसे पुश किया, फील्ड किया गया बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन पे। 1.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 9 रन। स्मृति मांदना खेल रही है 3 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 5 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं और शेफाली वर्मा 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। अभी तक 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया और भारतीय बल्लेबाजी की जो नींव है वो बननी शुरू होती हुई और बहुत जरूरत है कि इस ओपनिंग साझेदारी से एक बड़ा स्कोर भारत को मिले। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद और उसे पुश किया मिड ऑफ पर, जब तक फेन को फील्ड किया जाता तेजी से अपने अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने और इस स्कोर के साथ स्मृति पहुंची 4 के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत 10 रन बिना किसी नुकसान पर 1.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
2: Yes, it'll be now. This is an interesting contest that we'll have to see. Shabnim Ismail to Shefali Verma, because compared to Marizan Cup, Shabnim Ismail is giving more pace on the ball, and that's what Shefali Verma likes. Very first over for Shabnim Ismail. Also, she's also got all the experience behind her. Remember, brought out of retirement for this World Cup. Outside the off jump, and that's been driven, square driven. That's gone down to the square cover boundary for 4.
1: और ये शानदार चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे पुश भर किया, टाइमिंग इसमें अच्छी थी। हालांकि फील्डर के पास से ये गेंद निकलती हुई और ये 4 रन उनके बल्ले से निकलते हुए और इन 4 रनों के साथ शेफाली का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 10 के 10 पर। 3 गेंदें अभी उन्होंने खेली हैं और भारत 1.3 ओवर के बाद 14 के अपने स्कोर पर। इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स लेग स्टंप के बाहर थी, हल्का सा उसे पुश किया और जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने का और स्कोर पहुंचा इसके साथ 15 रन भारत का बिना किसी नुकसान पर 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद। भारत टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दूसरी इनिंग्स में जो पिच एक्सपर्ट्स की थी उनकी राय थी कि गेंद स्पिन लेगी और भारत ने अपने इस खेमे में 3 स्पिनर्स को चुना हुआ है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप के बाहर और से पुश भर किया और गेंद सीमा रेखे के बाहर 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
1: स्मृति मांदना के बल्ले से ये कवर बाउंड्री के बाहर खूबसूरत शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को सिर्फ पुश भर किया एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से, अच्छी टाइमिंग अच्छी प्लेसमेंट और उनके बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका। स्मृति मांदना पहुंची 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 7 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं और 1.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 19 पर। एक अच्छी शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों को।
4: इस क्रिकेट मैच का आगे का कौतिक का हाल अब हम आपको सुनवाएंगे 7:21 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
5: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
6: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
7: Thank you.
6: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव की किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप 2 हमें बताएं इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं।
7: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया इज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके

0: And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
0: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
0: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence,
1: yes,
0: that yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: So, Mr. Chanoy, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सुरेश जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है. और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे, और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए, तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है. वो पहले तो एक अपने घर में रखे रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर, या चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था. और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो. एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव-गांव में. और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है, और देश के लिए बहुत जरूरी है. और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
2: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया, और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के,
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
2: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीए किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था, और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स थे, अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो औरों देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे
1: जी,
2: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है, और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूँ, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है, और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स है और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट पे इंप्लीमेंट करने का देखते थे, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
2: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करें कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स, क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई, या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई हैं लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं एमएसएमईज के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
0: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
1: Yes.
0: और ओएनडीसी प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ जीडीपी होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ जीडीपी, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के, अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 trillion का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 trillion होगा, सर्विसेज 1 trillion होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 trillion। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को, के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
0: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमईज है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
1: Okay, another point, Mr. Chinoy, which I would like your view on, that logistics, you know, PM Gati Shakti, where they've taken a multimodal approach to physical connectivity. Then there is Logistics Data Bank 2.0. You know, the way the technology has been used, where you can just track real-time cargo. Or there are so many reforms for faster custom clearances and stronger export support. How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
2: So, Sunilji, you've talked of three different things, and I'll answer each one separately. So, first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, you know, to be export, and Mr. Sharma talked about how export.

0: माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं. हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में, दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम.
1: तो ये एक ब्रेकथ्रू मेजरली टू ईज ऑफ
0: जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है, जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया, तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है. अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव इन दी नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम.
1: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चनोय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
2: थैंक यू.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: दी, हाँ? ये देख कैसे.
5: हैप्पी बर्थडे भाई.
4: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग.
6: रेट है वो नीचे आता हुआ 10 से 9 से अब 8.24 पर, और आखिरी विकेट जो गिरी थी 67 के योग पर वो थी यशिका भाटिया की. और शबनम इस्माइल अपना पूरा का पूरा जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो झोंकती हुई अपनी गेंदबाजी पर अपने तीसरे ओवर के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. ऑफ स्टंप पर गेंद उसे हल्का सा पुश किया और जब तक खुद वापस दौड़कर पहुंचती हुई शबनम इस्माइल बल्लेबाजों के पास मुस्तैदी से आंखों ही आंखों में इशारा किया हरमनप्रीत ने और जमीमा रॉड्रिक्स ने अपने अपने छोर बदले और भारत का स्कोर 8.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद पहुंचता हुआ 71 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर. बहुत ही एक मुस्तैदी से चुराया हुआ ये रन, आंखों से इशारा किया और फिर अपने अपने छोर बदले. हालांकि ये कॉल जमीमा रॉड्रिक्स की थी क्योंकि सामने से वो देख रही थी बल्लेबाज को और उस कॉल को हरमनप्रीत ने हां बोली और दोनों ने अपने अपने छोर बदले. भारत 71 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 8.4 ओवर की समाप्ति के बाद और शबनम इस्माइल अपने ओवर की 5वीं गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. ऑफ स्टंप पर गेंद और उसे हल्का सा पुश किया. स्केयर लेग पर खड़े फील्डर ने भागकर इस गेंद को पकड़ा और पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास अपने अपने छोर बदलने के लिए और स्कोर इस 1 रन के साथ 72 पर पहुंचा. 8.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 72 3 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर. हरमनप्रीत कौर खेल रही हैं 2 के अपने व्यक्तिगत योग पर, जमीमा रॉड्रिक्स 7 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं. और अगर आप बॉलिंग को देखें तो तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं वो एक ही स्पीड के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं ताकि बल्लेबाज को ये सोचने के लिए मजबूर किया जाए. अगली गेंद ऑफ स्टंप लेग स्टंप पर थी और उसे हल्की सी दिशा दी स्क्वेयर लेग की तरफ. गेंद को फील्ड किया गया लेकिन पर्याप्त समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन चुराने के बाद और इस 1 रन से स्कोर पहुंचा 73 पर 3 खिलाड़ी के नुकसान पर. 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद 8.11 की औसत से अभी जो स्कोर बन रहा है जिसमें हरमनप्रीत के 3 रन है, जमीमा रॉड्रिक्स 7 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है, जो 3 विकेट्स गिरी है अभी तक वो स्मृति मांदना 17 के अपने व्यक्तिगत योग पर, शिवाली वर्मा 31 की अपनी तेज तरार पारी को समाप्त किया था उन्होंने, और यशिका भाटिया जो अपनी टाइमिंग से आज अच्छी बल्लेबाजी दिखा रही थी 15 के योग पर LBW करार दी गई.
7: वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट वी बिलीव आफ्टर विनिंग द टॉस बिकॉज द विकेट विल टर्न इन द सेकंड फॉर द सेकंड टीम बैटिंग एंड इंडिया हैव गॉट द स्पिन अटैक बट दे नीड टू पुट a good amount of total batting first on the board for the spinners to have some purchase and come to the party. They also having Prema Rawat, the leg spinner, 24-year-old, who is making a debut, and she's the 94th player to play T20s for India. Malaba, meanwhile, starts a fresh over. Round the wicket, once again, no pace on that one at all. Just a hint of turn, but not much on the leg and middle stump. Patted back along the wicket by Harmanpreet Kaur. 3 or 4 she is. She won't be in a hurry. She knows that if she spends enough time there, she can end with a flourish, as I said earlier. Jimmy Moy, 7 over. Mlaba. Short and length outside the off stump and waits for it. And then square cuts it away down to backward point for a couple. And that couple will take Harmanpreet to 5 now. And India are 75 for 3. So, you know, one of the things that managed to ensured that Shabnim Ismail got wickets. First over, she gave pace to the ball around 120 as we watch Mlaba once again. Well tossed up this time on the leg and middle stumps. Waits for it, does Jemima and turn it around the corner. Look at that. You know, one thing interesting, no pace of the ball at all. The batter has to wait for it and keep on waiting, and then the ball comes to the batter and try to turn, use the wrist and turn it around the corner. So that's what's Malaba's secret.
2: देखिए मलाबा की अभी जो गेंदबाजी हो रही है वो धीमे करे अगली गेंद और उसे उठाकर मारा है उन्होंने 4 रन.
8: ये लगा आभा का चौका.
7: लवली स्ट्रोक देयर फ्रॉम जेमिमा रॉड्रिक्स. दैट वाज इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप. गॉट राइट अंडर इट एंड देयर वाज शी'ड सीन द फील्ड ओवर देयर. नोबडी रियली इन दैट वाइड लॉन्ग ऑफ पोजीशन पिक्ड अ स्पॉट एंड ब्यूटीफुली प्लेड इट अ लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव down to the wide long off boundary for 4. That will be a boundary after 18 balls. That tells you what's been happening in the last 3 overs or so. The after getting 3 wickets, the South Africans have clawed their way back, putting the Indian batters under a tight leash. But the Indian batters out there experienced know very well what is needed is spend a few overs out there and then take the attack back to the South African bowlers. Mlaba this time on the leg and middle stumps. Ball straightens up after pitching. Waits for it as Jemima nicely turns it round the corner with a wrist down to backward square leg for a single. And now India 81 for 3. 67 is when the last wicket failed. So these two have added 14 already. And India's current run rate is 8.24. Last ball, Malaba's over, well tossed up, and Harmanpreet is content with a controlled drive down to long on. So, 9 runs coming off the Mlaba over, halfway mark at the end of 10 overs, India 82 for 3.
2: 8.2 ki ausat se ye jo ballebazi ho rahi hai, 10 overs ki samapti ke baad Bharat 82 run 3 khiladi ke nuksan par. Harmanpreet kaur khel rahi hai 7 ke apne wicket ke yog par, aur Jemima Rodrigues ne abhi jo 18 gendon ke baad 19vi gend par chauka lagaya, us chauke ki badolat 12 ke apne vyaktigat yog par khel rahi hai, aur 15 run ki jo bhagidari hai in dono ke beech mein abhi tak ho chuki hai. 3 khiladi jo bhartiya team ne khoye hain abhi tak, pehli wicket Smriti Mandhana 17 run par 30 रन की भागीदारी हुई थी पहली विकेट के लिए. दूसरी विकेट शिफाली वर्मा 31 रन पर आउट हुई, 24 रन की भागीदारी हुई थी दूसरी विकेट के लिए, और तीसरी विकेट यशिका भाटिया के रूप में आउट हुई. यशिका भाटिया 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई, और 13 रन की भागीदारी हुई थी तीसरी विकेट के लिए. 15 रन की भागीदारी अभी तक की इन जेमिमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर के बीच में हो चुकी है, और भारत अभी 82 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर स्कोर है अभी भारत का. ये जो टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खेला जा रहा है, भारत आज अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेलता हुआ अगले ओवर के साथ डी क्लार्क को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है डी क्लार्क, तेज गेंदबाजी भी करती है और बल्ले से भी तेज रन बनाने की यो हमेशा कोशिश में रहती है. 83 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत ने पहली गेंद पर 1 रन चुनाया. अब जेमिमा रॉड्रिक्स से सामना करने वाली है डी क्लार्क की अगली गेंद का. भारत 83 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 10.1 ओवर की समाप्ति के बाद 8.16 की औसत से ये रन बनते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, और ये उठाया है और ये आउट. बहुत ही आसान सा कैच, बॉलर ने खुद पकड़ा अपनी गेंद पर, और डी क्लार्क ने एक वो विकेट चटकाई है कि जिससे
6: एक जो सबसे जरूरी भागीदारी बनने की कोशिश की जा रही थी, और ये जो दोनों बल्लेबाज हरमनप्रीत और जमीमा रॉड्रिक्स, जिन्हें ये बोला जाता है कि ये बहुत लंबी पारी खेलने की क्षमता अपने पास रखते हैं, उसे सिर्फ मोड़ने की कोशिश करी गई थी लेग स्टंप की तरफ, बल्ले ने बाहरी किनारा लिया और एक आसान सा ही कैच अपनी ही गेंद पर डी क्लार्क ने पकड़ा और भारत ने जमीमा रॉड्रिक्स के रूप में अपना चौथा विकेट गंवाया। भारत 83 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 10.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
7: नाडी डी क्लार्क स्टार्टिंग दैट ओवर विथ द फर्स्ट डिलीवरी दैट वाज बोल्ड जस्ट ओवर 101 clicks, and very clearly the South Africans have understood, don't keep pace on the ball, that's the way to get wickets. We saw Shabnam Ismail doing that in her second and third over, Nadine de Klerk starting exactly in the same manner, and that ball to Jemima Rodrigues coming through very slowly off the wicket as well, deliberately bowled that way, and the bat went through, and that's why the ball ballooned up in the air for an easy return catch for de Klerk on a follow through. Now India in a spot of bother for sure. 83 for 4. Smriti Mandhana, Shefali Verma, Yastika Bhatia, Jemima Rodrigues all be back in the hut. I presume Deepti Sharma will be replacing Jemima Rodrigues out there in the middle. She's got all the experience, but after that will be Richa Ghosh. But Richa Ghosh can do a lot of tonking, but she's good when she comes in a little later on the leg and middle. The first delivery from Nadine de Klerk to Deepti Sharma, and she manages to roll a wrist on that one, playing down to mid wicket for a single. She's off the mark in the very first delivery. As we watch that delivery that Nadine de Klerk bowled to Jemima Rodrigues again in the monitor, and we see that it bowled so slowly, and Jemima Rodrigues went through with the stroke. The ball came in later, took the top half of the bat, ballooned in the air, and was a good return catch. Yes, Nadine de Klerk this time to Harmanpreet Kaur, and that's once again a good delivery on the leg and middle stumps, and Kaur plays it back along the wicket, no runs result. And they are pumped up, the South Africans, after getting these four wickets. They know they are back in the game big time over here. If they get one more wicket over here, it's only Richa Ghosh, because after that India have got Prema Rawat, Sri Charani and Nandini Arundhati Reddy, so not much of batting to come. So this pair has a huge responsibility, and there's a lot of cricket to be played in this Indian batting inning. Just 10.4 overs, all just the 2 runs and a wicket. De Klerk tries to go for the block, all slower through the air once again, and played on the onside by Harmanpreet Kaur for a single. The captain certainly realizes for sure that everything will revolve round over here, and I'm sure from here on Harmanpreet Kaur will want to take it very deep to the very end and play till the very end.
6: De Klerk, Nandini Klerk jo gendbazi kar rahi hai, 26 वर्षीय नंदिनी क्लार्क एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका की टीम के, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी उन्हें गेंदबाजी के लिए टीम की तरफ से निमंत्रण दिया जाता है, हमेशा विकेट चटकाने के लिए वो तैयार रहती हैं। गेंदबाज जो गोल्डन आर्म के साथ है, अगली गेंद उसे हल्का सा मोड़ा दीप्ति शर्मा ने, जब तक गेंद को डीप मिड विकेट तक फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 87 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 11 ओवर्स की समाप्ति के बाद 7.91 के रन रेट से अभी भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही है। नानी डी क्लार्क ने पहले ओवर में 5 रन दिए, लेकिन इन 5 रनों के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही बेशकीमती विकेट जमीमा रॉड्रिक्स के रूप में लिया, जिन्हें उन्हें खुद ही उन्होंने अपनी गेंद पर कैच किया। और के जैसे आप कह रहे थे कि भारतीय टीम अब स्टेट ऑफ बॉदर में हल्का सा महसूस कर रही है, क्योंकि ये एक रिकॉग्नाइज बैटिंग प्लेयर है जो भी गेंद बल्लेबाजी कर रहा है, दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर के रूप में। इसके बाद ऋचा घोष अच्छी बल्लेबाजी करती हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं, लेकिन इन दोनों को अब कुछ लंबा खेलना होगा ताकि एक अच्छी साझेदारी करी जाए।
7: विदाउट डाउट टू टेक इट डीप, शॉर्ट एंड लेंथ, द फर्स्ट बॉल ऑफ क्लोइ ट्रांस ओवर, दैट्स बीन स्पेकेड अवे, गुड स्टॉप एंड इल्यूड्स अ डाइविंग फील्डर देयर डाउन टू द बाउंड्री फॉर 4।
8: ये लगा आभा का चौका,
7: एंड गोइंग ओवर द बाउंड्री रोज फॉर 4।
6: हरमनप्रीत कौर से के बल्ले से यह पहला चौका निकलता हुआ, और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचता हुआ 91। कट किया था इस गेंद को, हालांकि दीप पॉइंट पर उसे फील्ड करने की भरपूर कोशिश करी गई, हाथ भी लगा लेकिन गेंद छटक कर सीमा रेखा से बाहर पहुंची हुई। हरमनप्रीत का स्कोर पहुंचा 13 पर, भारत 91 रन पर। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद नीचे थोड़ी सी रहती हुई और बहुत ही सूझबूझ के साथ उस गेंद को वहीं दबा दिया हरमनप्रीत कौर ने। उनके दिमाग में इस समय चल रहा होगा कि मुझे कुछ लंबा खेलना होगा, टीम की कप्तान भी है, अच्छी बल्लेबाजी करती है। ट्रायन अपने ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंपर, और ये एक स्पेशल फील्ड शॉट मिड विकेट के रूप में लगाया गया है ताकि जो सिंगल्स हैं जो चुराने की कोशिश करती है हरमनप्रीत कौर हमेशा, उसे भी रोक लिया जाए इस फील्डर के रूप में। 91 खिलाड़ी के नुकसान पर ट्रायन की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा उसे पुश किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने के लिए, और 92 for 4 11.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
7: गिवन द फैक्ट इन वे इन विच मलाबा एज वेल एज मरिजन काप एंड शब्दीम इज़मेल बोल्ड सो वेरी वेल, दिस इज गुड थिंकिंग हियर बाय लॉरा वुल्फ फॉर गेटिंग इन क्लोई ट्रायन, बिकॉज प्रॉब्ली शी इज द बॉलर दैट द इंडियंस विल गो आफ्टर to step up the run rate, which was once over 11.5, now dropped to 7.9. You know, you can't always have 11.5, but when you've lost 4 wickets, here is first the next delivery from Chloe Tryon over the wicket, this time to Deepti Sharma on the off and middle, not much turn, played away back along the track and no runs result. So after that first boundary, in the very first delivery, she's come back well here, Chloe Tryon. The point is, will she end it well? And so what I was talking about is...
9: श्रोताओ, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल जारी रहेगा 8:35 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष व्यापार में सुगमता।
3: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा।

0: हरमनप्रीत ने इस गेंद को हल्का सा पुश किया, बॉल को जब तक कवर पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों के पास समय थे अपने अपने छोर बदलने के लिए और स्कोर पहुंचा 99 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर। 12.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद आयबोंगा खाका ने अभी तक अपने 1.4 ओवर्स में 9 रन खर्चे हैं और एक विकेट भी उन्होंने अर्जित की है। हरमनप्रीत 16 पर खेल रही है और सामना कर रही है दीप्ति शर्मा आयबोंगा खाका के इस ओवर की पांचवी गेंद का। राइट आर्म ओवर द स्टंप, ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, उसे पुश भर किया, डीप कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया और इस एक रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 100 रन। और ये भारत ने जो अपने दूसरा 50 रन भारत ने जो बनाया है, अब 100 रन 51 गेंदें लगी, हालांकि पहले 100 को पहले 50 को बनाने में 26 गेंदें लगी थी और दूसरे 50 रन अर्जित करने के लिए भारतीय टीम को 51 गेंदों का सामना करना पड़ा और अब भारत जो है वो 100 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 12.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद। इस ओवर की आखिरी गेंद, उसे हल्का सा पुश किया, बॉल को डीप कवर पर आकर फील्डर ने फील्ड किया, 101 रन पर स्कोर पहुंचा भारत का चार खिलाड़ी के नुकसान पर। हरमनप्रीत पहुंची 17 के योग पर और दीप्ति शर्मा 9 रन पर बल्लेबाजी करती हुई 18 रन की भागीदारी इन दोनों बल्लेबाजों के रूप में दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है और बाकी के जो बचे 7 ओवर हैं के भारत उसमें एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा। हालांकि गेंदबाजी बड़ी चतुराई से करी जा रही है और कप्तान जो वॉलमार्ट है वो बहुत ही मंझी हुई प्लेयर हैं और बहुत ही तरीके से अपने गेंदबाजों को बदल रही है। लौला बॉलवर्डाट एक ऐसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक ऐसी एक्सपीरियंस कप्तान है जिन्हें मालूम है कि गेंद के पेस को कितना रोकना है और कब किस बॉलर को बॉल गेंदबाजी दी जाए ताकि बल्लेबाजों को बांध के रखा जाए।
1: इंडियाज फर्स्ट 50 केम ऑफ 26 बॉल्स, दैट्स व्हेन शेफाली वर्मा वाज ऑन अ रोल एज द फर्स्ट बॉल ऑफ अ फ्रेश ओवर फ्रॉम लाबा fetches India one more, that takes India up to 102 for 4. The current run rate is 7.75. India's second 50, 51 to 100, came in 51 deliveries, and that tells you a story in itself. Double the number of deliveries for the second 50. That's what happens when you lose wickets. Current run rate is 7.75. Malaba now from round the wicket this time. The DP Sharma goes for a favourite sweep and manages to get over the infield down to the back foot square leg boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका।
0: दीप्ति शर्मा के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 6। स्केयर विकेट खेलना चाहती थी दीप्ति शर्मा, कामयाब भी हुई, हालांकि जो स्ट्रोक वो खेलना चाहती थी उसके लिए कामयाब ना हो सकी, लेकिन 4 रन उन्हें जरूर मिले और इन 4 रनों के साथ दीप्ति का स्कोर पहुंचा 13। मलावा अपने ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और हल्का सा उसे दिशा भर दी और 3 फील्डर्स उस गेंद को रोकने के लिए पहुंचे और जब तक गेंद को रोका जाए, थ्रो किया जाए वापस, तब तक पर्याप्त समय था एक रन के चुराने के लिए और इस एक रन के साथ 107 पर पहुंची भारतीय टीम का स्कोर 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। हरमनप्रीत कौर खेल रही है 18 पर और दीप्ति शर्मा 14 के अपने व्यक्तिगत योग पर।
1: नेक्स्ट डिलीवरी इज पुल राउंड द कॉर्नर एंड दे गो थ्रू फॉर अ रन, गुड कॉलिंग एंड गुड रिस्पॉन्स देयर। So, 7 runs and 4 deliveries in this Malaba over so far. Malaba has conceded 23 runs in 2.4 overs. More than normally what she does by her miserly standards. India's run rate is 7.9. Malaba around the wicket this time, fetched from outside the off stump and driven down to wide long on for a single. So, 4 singles and that one boundary in this over, that takes India up to 109, one delivery in this Malaba over remaining now. And if India continue to score, current rate will end up at 158. They must probably be looking at somewhere around 170. Malaba around the wicket, short and outside the off stump, cracked away between the third man fielder and the point fielder down to the back foot point boundary for 4.
2: Ye laga abha ka chauka।
0: बेहतरीन स्क्वेयर कट हरमनप्रीत के बल्ले से और गेंद स्क्वेयर बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए और इस चौके के साथ हरमनप्रीत पहुंची 23 के अपने व्यक्तिगत योग पर और भारत 113 रन चार खिलाड़ियों के नुकसान पर 14 ओवर की जो गेम है वो भारतीय टीम की हो चुकी है। हमारे जो स्टेटिस्टिशियन है मोहम्मद ईशान उद्दीन साहब ने बताया है कि हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा की पार्टनरशिप 30 इनिंग्स में उन्होंने अभी तक 555 रन बना लिए थे और उसमें चार बार 50 के ऊपर की भागीदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है और अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 30 रन की भागीदारी हो चुकी है। भारत 8.07 की औसत के साथ 14 ओवर में अब तक 113 रन चार खिलाड़ियों के रूप में बना चुका है। आउट होने वाली खिलाड़ी स्मृति मानधना, शिफाली वर्मा, यशिका भाटिया और जमीमा रॉड्रिक्स आउट होकर क्रीज पर वापस जाती हुई। हरमनप्रीत 23 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं और दीप्ति शर्मा 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। इन दोनों के बीच में अभी तक 30 रन की बहुत बहुमूल्य भागीदारी हो चुकी है और मलावा ने अपने 3 ओवर में 28 रन खर्चे हैं। हालांकि हमारे साथी कमेंटेटर के साहब बोल रहे थे बहुत कंजूस है रन देने के मामले में, लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंद पर अभी तक 3 ओवरों में 28 रन अर्जित किए हैं और भारत अभी 113 रन पर खेल रहा है चार खिलाड़ी गंवाने के बाद। बाकी के बचे 6 ओवर्स में ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी भागीदारी बनाने की कोशिश जरूर करेंगी ताकि भारत को एक अच्छा स्कोर दिया जाए, ताकि जो बहुत लंबी इन डेप्थ बैटिंग है साउथ अफ्रीका की उसको रोका जा सके उस चेज को चेज करने के लिए।
1: 113 for 4. Now, interestingly, 6 overs to go. Marizan Kapp has got one. Ismail has got one. So that will make it 2 overs. And Kaka has got 2. She, in all probability, bowled 2. That will make it 4. And Nadine de Klerk has got 3 left. She'd probably bowl 2. Do Mlaba has got 1. I presume, having conceded 28 of 3, she may not be given one more. We'll have to wait and see. But certainly, Karp will get one, Ismail will get one, and I presume Kaka will get 2. Nadine de Klerk just the one over for 5 runs, and she got the wicket of Jemima Rodrigues cotton ball. So it's quite possible that we'll see more of Nadine de Klerk as well. So this Indian innings is very interestingly poised, but one important factor one must point out over here is 14 overs have been bowled, not a single extra has been given. No balls, no wides, and not a single extra has been given so far, which is brilliant effort by the South Africans.
0: ये देखिए जी कितनी किफायती बॉलिंग करी गई है, कितनी डिसिप्लिन से गेंदबाजी करी गई है कि ना कोई बाय, ना कोई लेग बाय, ना कोई नो बॉल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइड है वो अभी तक एक भी अर्जित नहीं करी गई। बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग करी गई है। यशिका भाटिया 15 पर आउट हुई थी, शिफाली वर्मा ने 31 रन बनाए थे और सबसे स्मृति मराना जो शुरू में आउट हुई थी 17 रन उन्होंने बनाए थे, 12 गेंदों का सामना किया था। हरमनप्रीत कौर खेल रही है 23 के योग पर, अभी तक उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया है और दीप्ति शर्मा जिन्होंने अभी तक 10 गेंदें खेली हैं और उन्होंने 15 रन अर्जित किए हैं। दीप्ति शर्मा के बल्ले से एक चौका निकला है, हरमनप्रीत के कौर बल्ले के से 2, जमीमा रॉड्रिक्स ने आउट होने से पहले एक चौका मारा था, यशिका भाटिया ने आउट होने से पहले बेहतरीन 3 चौके अपने बल्ले से जड़े थे, शिफाली वर्मा ने भी 3 चौके जड़े थे और शिफाली वर्मा ने 4 चौके और 1 छक्का जड़ा था आउट होने से पहले, और स्मृति मानधना ने आउट होने से पहले 3 चौके जड़े थे अपने 17 के योग पर। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ग्रुप ए का ये एक बहुत ही अहम मैच खेला जा रहा है। 14 ओवर्स में बिना किसी एक्स्ट्रा के भारत के अब तक 113 रन है चार खिलाड़ियों के नुकसान पर।
1: The wickets that India have lost so far: Smriti Mandhana bowled by Karp for 17, Shefali Verma called by Jafta of Ismail for 31, Yasika Bhatia, LBW to Kaka for 15, Jemima Rodrigues the last to go, cotton bowled by de Klerk for 12, and ever since it's been Harmanpreet Kaur, the Indian captain, and Deepti Sharma out there in the middle. Kaur is 23 of 20 and Deepti Sharma is 15 of 10. So these two have really gotten together and they'll want to play till the very end and end this innings with a flourish. India were going at about over 11 and a half, and when they started losing wickets, obviously the run rate went down to around 7.7 in the last couple of overs, up to over 8, close to about 8.1 now, which means India will end at around 160, or a little more than that. But they'll want to look at least about 180. Shabnam Ismail from bite of the crease, first ball on the leg and middle stumps, turned around the corner nicely by Deepti Sharma. They go through for one and they're happy with just the one. So the over starts off on a single. Shabnam Ismail 1 for 26 in three overs prior to this one. And she got the wicket of Shefali Verma, caught by Chafta. That's a lovely delivery. Almost, I'd call it a snorter, short pitch delivery. And Shefali Verma in two minds whether to play it or not. In the meantime, it was so well directed. A bouncer between her shoulder and the head, which is the perfect place in which you can bowl a bouncer. Have the batter in two minds. Also, came a little bit slower off the wicket. And that's what happened when she ended up getting the faintest of tickles onto the gloves through to Chafta. Shabnam Ismail, this time over the wicket, this short in lane, that's been pulled away. A short arm pull, or a short arm jab, you can say, down to Kapp there on the mid wicket boundary for a single. So two singles in this over so far. Now, very clearly, Harmanpreet and Deepti have realized this is over number 15, and they will want to play at least another over or over and a half, and after that, go after the bowling and get some boundaries in. Ismail, two singles in this over so far, and she's bowling around the off stump. From round the wicket this time to Deepti Sharma on the leg and middle stumps for a change, and that's been turned away on the onside for a single. And when she's bowling to Harmanpreet Kaur, she's bowling over the wicket, pitching it on the off stump for Deepti Sharma. What she's doing is going wide of the crease, round the wicket, and trying to bring the ball in, also hitting the deck hard.
3: ये देखिए जी, बहुत मुस्तैदी से गेंदबाजी करी जा रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में उनका शुमार है शबनम इस्माइल का, और दोनों बल्लेबाजों को वो अलग तरीके से गेंदबाजी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये दोनों बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और खासतौर पर हरमनप्रीत कौर को वो गेंद लेग स्टंप के बाहर देना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है हरमनप्रीत कौर का अपनी ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और ये बॉल्ड बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधा विकेट के ऊपर, और भारत ने अपने कप्तान के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट खोया है हरमनप्रीत कौर के रूप में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शबनम इस्माइल गेंद को ऑफ स्टंप पर रख रही हैं, और ऑफ स्टंप के आसपास वो गेंद को इसलिए रख रही हैं ताकि उस गेंद को कट ना किया जा सके, और एक गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की आई और हरमनप्रीत कौर उसे कट करना चाहती थी, गेंद का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद सीधा स्टंप पर, और भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका हरमनप्रीत कौर के रूप में, जो 24 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई, 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और ये 116 रन भारत के पांच खिलाड़ियों के नुकसान पर 14.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद एक बड़ी विकेट इस्माइल शबनम इस्माइल ने अपने आप के पास अर्जित करी है, और इसीलिए उन्हें दुनिया के एक बेहतरीन गेंदबाजी के रूप में, गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, और इस विकेट के साथ भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ 116 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होकर जाती हुई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 24 रन बनाए आउट होने से पहले, और शबनम इस्माइल 3.4 ओवर्स में अभी तक उन्होंने 28 रन खर्चे। अगली गेंद ऋचा घोष ने उसे हल्का सा पुश भर किया और बॉल को फील्ड किया गया मिड ऑफ पर, बिना किसी स्कोर के, बिना किसी नुकसान पर भारत 116 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर। ये 15वां ओवर चल रहा है और भारत के अभी 116 रन अर्जित किए हैं 7.82 की औसत से ये बल्लेबाजी हो रही है भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। इस्माइल 3.5 ओवर्स में अभी तक उन्होंने 28 रन दिए हैं और दो विकेट अपनी टीम के लिए उन्होंने अर्जित किए हैं, और 116 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर अभी जो एक बहुत ही बहुमूल्य विकेट भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपना 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, उनका अर्जित किया, उन्होंने बोल्ड किया, उन्हें 24 के व्यक्तिगत योग पर 22 गेंदें उन्होंने खेली थी आखिरी गेंद इस ओवर की। एकदम विकेट टू विकेट की गई बॉल और ऋचा घोष ने उसे हल्का सा पुश भर किया, खुद इस्माइल ने उसे फील्ड किया और ओवर की समाप्ति 116 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर।
1: What a spell of bowling the last three overs by Shabnim Ismail. The first over went for 17. The remaining three have gone just for 11. That tells you the story of Shabnim Ismail. The first over went for 14. I beg your pardon. The first over went for 14. The remaining three have gone for 14. That's each over is less than 5 an over. And that tells you a story how. And one of the reasons that she's been successful in over number 2, 3 and 4, she realized quickly enough with all the experience, cut the pace on the ball. The first over was consistently above 120, 122 or thereabouts. And from the second over onwards, it was around 111, 107. So that is what has got her the success. And got the big wicket of Harmanpreet Kaur. First ball of a fresh over. Short to length outside the off stump from Kaka. This time to Deepti Sharma. And Deepti Sharma square cuts it away. Probably gets the feeling she missed out on that because after quite some time, there was width on the delivery. Otherwise, they bowled really nagging line and length. Have the South Africans to the... From over the wicket to Deepti Sharma. A lot of width on that one. And Deepti Sharma goes after it. Doesn't quite connect. That's because that was bowled slower through the air. Very slow delivery. And Deepti Sharma not picking the slow one. And the ball going through to Sinalo Chafta. So two dot balls to start the over. That's the 16th one of the innings. And Kaka really bowling very intelligently. Over the wicket. And there's been pushed gently in the onside. They go through for one. Just a one run in three deliveries in this over so far from Ayabonga Kaka. That'll bring in Richa Ghosh. Now, Richa Ghosh, we know, can talk the ball. Now, if the wicket is slower, the ball is not coming onto the bat. Sometimes, a batter who's got the power can generate power and hit the ball out of the park or for boundaries. Now, Richa Ghosh has got that kind of power. It'll be an interesting contest between Kaka and Richa Ghosh. What's important to see is what's the line that Kaka now bowls to Richa Ghosh. And here is Kaka from over the wicket to Richa Ghosh. That's the off stump, right on the off stump. And Richa Ghosh has to push it down to long on. Now, no width, no pace. And that's a good way to go for also bowling the ball exactly on the off stump, trying to hit the top of off.
3: आप ये देखिए कि गेंदबाजी कितनी डिसिप्लिन हो रही है, विकेट टू विकेट गेंद कराई जा रही है ताकि बल्लेबाज को मौका ना मिले एक अच्छा शॉट खेलने का, एक लंबा शॉट खेलने का। इसलिए बहुत सीधी गेंद करी जा रही है अगली ओवर ऑफ स्टंप के बाहर और उसे सीधा खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन का, लॉन्ग ऑफ का फील्डर बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया था इसी शॉट को रोकने के लिए ताकि कोई स्कोर ना बन सके। और भारत 118 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 15.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: The first six overs a power play. India scored 59 for 2. Just the 13 ducks. 7 to 15. 7 overs 15. 57 runs came on 3 wickets. And Deepti Sharma waits for that one. At the very last moment, plays a lovely cut. A very late cut, one can say. And that goes down to the third bend boundary for 4. The last ball was cut.
2: Ye laga. Ab haka choka.
3: और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 122 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। दीप्ति शर्मा के बल्ले से ये स्क्वेयर कट करने की कोशिश थी, बाहरी किनारा जरूर लगा और थर्ड मैन की दिशा के बाहर ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। 4 रन के लिए भारत का स्कोर पहुंचा 122 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये 122 रन भारत ने अर्जित किए हैं 16 ओवर्स में 7.63 की औसत के साथ। इस्माइल शबनम इस्माइल ने 4 ओवर्स में 28 रन दिए हैं और अभी अभी खाका ने अपना तीसरा ओवर किया पूरा। आयबन खाका ने 3 ओवर 17 रन 1 विकेट। मैरिजोना कैप ने 3 ओवर में 21 रन दिए और डी क्लार्क अपने दूसरे ओवर के साथ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और उसे हल्का सा दिशा दिया और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन।
2: ये लगा अब हाका चौका।
1: I just suspect that ball probably slipped out of De Klerk's hand. Have a look at that as we see that again. But good scoring opportunity. And going after that, Rajisha goes gets the outside edge down to the third bed boundary for four. Good start to the over from India's perspective. 126 for five. De Klerk this time. This is a much better delivery on the off and middle stumps, and that's been driven down to orthodox mid wicket for a single. And Malaba, the fielder on that occasion. The first ball of that over was... she probably went for the yorker on that occasion, but that ball slipped from her palm, I get the feeling. The more we see it again and again. Run rate for India now is 7.8. De Klerk, after the boundary, coming back with just a single, readjusting her field. 127 for 5 now. 22 is Deepthi Sharma. She's the strike of De Klerk. Over the wicket, De Klerk. Close to the stumps. Outside the leg stumps. Goes for the sweep, but no pace on that one. The slow ball. And just goes gently. Lobbing across on the onside for one more to India. One more to Deepthi Sharma. India now 128 for 5.
3: Bharat 128 run. 5 khiladi ke nuksan par. Deepthi Sharma khel rahi hai 23 ke apne vyakti ka jyog par. Aur Richa Ghosh jo abhi abhi aayi hai unhone pehli gend par chauka lagaya. 6 ke apne vyakti ka jyog par ballebazi karti hui. 16.3 overs ke baad bhartiya team ne 128 run banaye. Ye gend off stump ke bahar. Cut karna chahti thi, kamyab nahi hui. Aur wicket ke piche khadi jo wicket keeper hai unhone use mustaidi se gather kiya. Bina kisi nuksan ke aur bina kisi score ke.
1: Kyunki aapko they're not picking the slow one.
3: Yeah.
1: That's the important factor over there. It's every delivery, one after one, cutting pace on the ball. And once again, Richa Ghosh was trying to place it on the offside. Ball coming so slowly in the air that the ball is going through. This is good bowling. After the first four, coming back well. De Klerk this time, and Richa Ghosh goes after it and pulls it to wide long on. Just for a single, once again doesn't get it from the meat of the blade because she couldn't get under the ball. So slowly does the ball come. And also it's an interesting thing to think about. India 129. Now this wicket is not as conducive as probably one thought. The ball is coming slower off the wicket, much slower than one anticipated. It could be that even a 160 score could be good. De Klerk for the last time in the over, then slipped round the corner to bad ball outside the leg stump down to the square leg boundary for four.
2: ये लगा आभा का चौका.
3: Deepthi Sharma के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन शॉट लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. गेंद को सिर्फ उन्होंने दिशा भर दी और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 133 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर. और दीप्ति शर्मा धीरे धीरे अपने बल्लेबाजी से मुस्तैदी से 27 के अपने व्यक्तिगत योग पर पहुंचती हुई. बाकी बचे तीन ओवर में भारतीय बल्लेबाज अच्छा रन बनाने की कोशिश करेंगे. हमारे स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद उशान उदीन साहब ने बताया कि ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा ने इसी साल अप्रैल में जो दक्षिण अफ्रीका दौर पर भारतीय टीम गई थी, भारत को 65 रन की एक साझेदारी छठे विकेट के लिए दी थी. जोहानसबर्ग में यह मैच खेला गया था और भारत हालांकि इस सीरीज में हार गई थी. अगली गेंद ऋचा शर्मा ने उसे मिड विकेट की तरफ खेला और जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, नए ओवर की पहली गेंद थी ये. मलाबा के ने ये गेंद डाली थी. मलाबा ने अभी तक 3.1 ओवर में 29 रन दिए हैं बिना किसी विकेट के. भारत का स्कोर पहुंचा हुआ है 134 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 17.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत का ये स्कोर है. साउथ अफ्रीका ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है जिसमें कैप ने 3, इस्माइल ने 4, ट्रायन ने 2, मलाबा अपना चौथा ओवर डालती हुई. लेफ्ट आर्म ऋचा घोष को ये गेंद लेग स्टंप के बाहर और ये वाइड का इशारा, पहला वाइड इस मैच का साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने डाला है. 17.1 ओवर्स के बाद ये पहला एक्स्ट्रा रन अर्जित किया है साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों ने. अगली गेंद और उसे उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन पर. इस गेंद को बहुत ही मुस्तैदी से फील्ड किया गया लेकिन तब तक पर्याप्त समय था. ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा के पास 2 रन चुराने के लिए और छठे विकेट की भागीदारी में अभी तक 21 रन अर्जित कर चुकी हैं ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा. भारत का स्कोर 137 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर 17.2 ओवर्स के बाद. मलाबा अपने ओवर की अगली गेंद और लेग स्टंप के बाहर और उठाकर मारने की कोशिश करी थी, लेग के ऊपर एक आसान सा कैच और इसी के साथ आउट होकर वापस जाती हुई दीप्ति शर्मा, जो कि एक अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और उसे उठाकर मारना चाहती थी। अच्छा कैच पकड़ा गया मैरिजॉन कैंप द्वारा। अच्छी फील्डर है, अच्छी गेंदबाज है और अच्छी बल्लेबाज भी है और भारत ने अपना छठा विकेट खोया दीप्ति शर्मा के रूप में, जिन्होंने 29 रन बनाए 21 गेंदों का सामना किया और इन 29 रनों में शानदार 3 चौके भी शामिल थे और ये विकेट उन्होंने बॉलर को गिफ्ट के रूप में दिया। हालांकि वो स्कोर को थोड़ा तेजी से बढ़ाना चाह रही थी लेकिन नाकामयाब हुई और एक बहुत ही बेहतरीन कैप जो कैच पकड़ा गया मैरिजॉन कैंप के द्वारा, जिसकी बदौलत भारत ने अपना छठा विकेट किया खोया। 137 रन भारत ने अभी तक बनाए हैं 17.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद। ऋचा घोष के कंधों पे और अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, अगले 2.3 ओवर्स में भारत कितना स्कोर खड़ा कर सकता है भारत इस मैच में। अगली गेंद, आहा, गेंद स्पिन लेती हुई, आप ये देखिए टप्पा डलने के बाद पूरी तरह से गेंद बाहर निकली और अनुदिति उसको मारना चाहती थी, पूरी तरह से बीट हुई, खुशकिस्मत रही गेंद ने बल्ले का कोई बाहरी किनारा नहीं लिया और नुकसान ना हो सका। मलावा अपने ओवर की 5वीं गेंद के साथ, अच्छी गेंद ऑफ और मिडल पर और उसे हल्का सा पुश भर किया, ऋचा घोष ने एक रन चुराया और अरुंधति ने अपना खाता खोला और ऋचा घोष अब सामने मलाबा के। चौथे ओवर की आखिरी गेंद में 17.5 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर है 138 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। मलाबा अपने ओवर की अगली गेंद ऋचा घोष को जोर से मारने की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रही, मिड ऑन पर खड़े फील्डर के सीधा हाथों में बिना किसी स्कोर के बिना किसी नुकसान के और 18 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर पहुंचा है 138 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी अभी जो बल्लेबाज आउट होकर गई हैं दीप्ति शर्मा, एक अच्छा उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था, 29 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई थी, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया था आउट होने से पहले और इन 29 रनों में 3 चौके उनके बल्ले से निकले थी। दीप्ति शर्मा कॉट मैरिजॉन कैंप बोल मलाबा, 29 रन, ऋचा घोष खेल रही है 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर। हालांकि उनके बल्ले से अभी तक कोई जोरदार स्ट्रोक नहीं आया जिसके लिए वो जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं और अगले 2 ओवर में वो स्ट्रोक्स क्या हमें देखने को मिलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। खाका अपने ओवर के साथ तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर।
4: हाय बुग्गा खाका, सच अ फ्रेश ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट एंड राइट टू द ब्लॉक होल डग आउट बाय अरुंधति रेड्डी देयर फॉर अ सिंगल, बट दिस इज व्हाट इंडिया वांट, दे वांट ऋचा घोष ऑन एज मच स्ट्राइक एज पॉसिबल, शी इज द वन दैट कैन डू डैमेज to the South African bowling over here. Kaka, so far 1-18 in 2 overs prior to this one. And Richa Ghosh now. Ayabonga Kaka over the wicket to Richa Ghosh. Once again goes for the block hole. And that's been driven down to long off for a single. So just the 2 singles so far. Good from South Africa's perspective. 18.2 overs. They bowled very disciplined manner right throughout. Just the 1 wide. And we have only 10 deliveries remaining in this innings of 20 overs. That tells you a story in itself. No balls, no wides. Here's Ayabonga Kaka this time. Reach a goal to Arundhati Reddy, who makes room for that. But Kaka thinks well, follows the batter on that occasion, bowls right on the pads, and Arundhati Reddy can do no more than dig it out for another single. Gets the nod from her captain, does Kaka. There, Wolfart telling Kaka, well, bowled, because she followed the batter and didn't give any room to Reddy, who was trying to go inside out on that one. Here's Ayabonga Kaka to Richa Ghosh, who comes down the wicket and she once again follows. Has she found the gap? A lovely stop there right on the mid-wicket boundary, but I just reckon they'll probably get a couple for that. Lovely fielding once again by the South Africans. That is Chloe Tryon there, who dived right across and prevented what could have been a boundary. So another 2 saved over there. They would have saved at least about 8 or 10 runs by good fielding, around 8 for sure in this innings.
1: which now has got another 8 deliveries left. Yes, Ayabonga Kaka this time to reach a goal. Once again, the pad. This will go down to the square leg boundary for 4. Bad goal.
2: चौका
3: रीचा बल्ले रीचा घोष के बल्ले से यह निकला हुआ चौका जिससे स्कोर भारत का पहुंचा है 147 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर और एक अच्छा शॉट था उसे सिर्फ दिशा भर दी और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए बहुत देर के बाद ये एक चौका भारतीय बल्लेबाजों के हाथ से आया है हालांकि कोशिश पूरी करी गई थी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग पर लेग पर खड़ी फील्डर के द्वारा लेकिन नाकामयाब रही और भारत का स्कोर पहुंचा 147 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 18.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद लेग स्टंप के बाहर गेंद और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर वाइड के रूप में 4 रन
2: ये लगा आभा का चौका.
1: This is what a pressure of a boundary can do even to an experienced campaigner like Kaka and also the initial movement of Richa Ghosh trying to give herself a little bit of room. Kaka trying to follow the batter and on this occasion Richa Ghosh not moving as much and a bit premeditated. Kaka over there thinking that she'd probably move more to the leg side and that's why it ended up being 4 wides. Costly runs. Kaka this time to Richa Ghosh this time tries to hit the tram lines. Wide of the off stump, gets it perfect. That's a dot ball, but an expensive over there from Ayabonga Kaka. 13 came of that, and the end of 19 overs. India 152 for 6. We'll have to wait and watch whom the ball is given to for the last over. Definitely, I believe it will be Marizan Kapp because she's bowled so well. The last over will be bowled in Marizan Kapp.
3: भारत का स्कोर इस समय 152 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर भारत ने पहले 50 रन बनाए 26 गेंदों का सामना करते हुए दूसरे 50 रन यानी कि 51 से 100 के बीच में 51 बॉलों में उन्होंने ये 50 रन अपने बनाए और 101 से 150 का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने 30 गेंदों का इस्तेमाल किया तीसरे 50 रन को पार करने के लिए और भारत इस समय 19 ओवर की समाप्ति के बाद 152 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर ऋचा घोष खेल रही है 15 रन के अपने व्यक्तिगत योग पर और अरुंधति खेल रही है 3 रन के अपने व्यक्तिगत योग पर भारत का रन रेट है 8 और मैरिजन कैप अपने आखिरी ओवर के साथ पहले 3 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए थे 1 खिलाड़ी के नुकसान पर और राइट आर्म ओवर द स्टंप्स कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई है कुछ दिक्कत उन्हें महसूस हुई है इसलिए वो वापस दोबारा से अपने बॉलिंग मार्क पर जाती हुई मैरिजोना कैप ने 3 ओवर में 21 रन दिए शबनम इस्माइल ने 4 ओवर में 28 रन ट्रेवन ने 2 ओवर में 23 रन मिलाबा ने 4 ओवर में 33 रन आयमोंगा खाका ने 4 ओवर में 31 रन और नदीन डिक्लार्क ने 2 ओवर में 16 अगली गेंद और उसे खेला गया है डीप कवर्स की तरफ जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन बल्लेबाजों ने चुराया और इस एक रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 153 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर ग्रुप ए का ये जो अहम मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड के इस मैदान पर खेला जा रहा है जिसमें भारत ने अभी तक 153 रन अर्जित किए हैं 6 खिलाड़ी के नुकसान पर ऋचा घोष अब सामना करती हुई मैरिजन कैप के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स और उसे उठाकर मारने की कोशिश करी लेकिन एक फिर से आसान सा कैच शॉट फील्डर ने जो लॉन्ग लेग पर शॉर्ट फाइन लेग पर जो फील्डर था उसके हाथों में बल्ले ने गेंद का बाहरी किनारा लिया गेंद ने और सीधा चढ़कर फील्डर के हाथों में बिना किसी गलती से इस कैच को लपका और भारत को अगला झटका मिला ऋचा घोष के रूप में हालांकि भारत को बहुत उम्मीद थी कि आखिरी ओवर में ऋचा घोष के बल्ले से कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे कॉट खाका बोल्ड कैप ऋचा घोष 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर वापस जाती हुई 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया और भारत एक इस विकेट के साथ 153 पर 7 खिलाड़ी आउट हुए भारत के ऋचा घोष अभी अभी आउट होकर वापस जाती हुई 15 के व्यक्तिगत योग पर 19.2 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर पहुंचा हुआ है 153 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर
1: Once again, the slow ball doing the trick over there for me, and that's what I've been saying right throughout this innings. They've not given any pace on the ball at all, and Marizan Kapp with all the experience And what Richa Ghosh did there was went through with the stroke. The ball came in later, took the top edge and ballooned up to the field at short fine leg. And that was easily taken by Kaka. As here is Kapp. And this time, and that's been lofted. Has she got the distance? It'll go a few bounces. Will be cut off at wide long on. Just the one. So this is a good final over by Marisan Kapp. A couple taken over there, actually, by... There'll be the first runs for the debutant, as Prema is the one who gets those two runs, and she'll be happy. Always good. You play your first international game, your first T20, and you've got runs on the board. What better can she do over here? Two runs, three runs, three.

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्री हिट 20 में। मेरा नाम है मुनीश जॉली, मेरे साथ मुदिता है और हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पे मौजूद हैं। वैशाली माथुर, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र सिंह, बीसीसीआई से क्वालिफाइड कोच, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्थरा गणेशन। और आप जानते ही हैं कि 159 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया है साउथ अफ्रीका को। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बैटल ऑफ वॉरियर्स है, वो वॉरियर जो 50 ओवर का जो फॉर्मेट था उस वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले थे, लेकिन ये मुकाबला कुछ वैसा ही लग रहा है। सबसे पहले वैशाली आपसे जानना चाहूंगा, यहां पे खुश हैं स्कोर के साथ?
1: थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं लैक हो गई है, एंड कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जिसके बैट से कॉन्टिन्यूस स्कोर आया हो।
0: ओके,
1: एंड उसके साथ अगर देखा जाए इस मैच की बैटिंग लाइनअप के बारे में तो मोस्टली आउट एक ही वे में हुए हैं, एंड उस पे हमें फोकस करना चाहिए।
0: वो भी समझा दीजिए किस वे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा मदद मिल जाएगी।
1: अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना चाहिए था, जो हम उसको कट करके खेल रहे थे वो नहीं करना था हमें। हम हमेशा लेग के साइड पे क्यों रन देखने की कोशिश करते हैं, जब हम कवर्स के ऊपर से भी हम इतना जिगरा रखते हैं कि मार सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते थे। उसको माइंड, जो भी बैटर आ रहा था, जैमिमा भी आई, तो उनको ये देखना चाहिए था कि बैटर कैसे आउट होके गया कि वो गलती हम भी ना करें।
0: एक और शख्स हमारे साथ यहाँ है रविंदर जी, लेकिन एक मोहतरमा है जिनकी आवाज बड़ी मीठी है, कोयल सी उनकी बोली है, आपके चेहरे में स्माइल कम होगी पर 159 अच्छा स्कोर होता मुदिता
2: जी, लेकिन शायद उम्मीद से कुछ कम रह गया जो हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले उम्मीद जताई थी। रविंदर, जो हम पहले बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर की, कि अगर उन पर प्रेशर आया तो क्या वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आज के प्रदर्शन को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए, स्टार्ट तो अच्छा ही था, तीन पहले जो स्मृति आउट हुई 3 में 30 थे, 6 में 54 रन थे, स्टार्ट में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जब विकेट जो गई हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि विकेट थोड़ा स्लो था, इतना विकेट के जो स्लो था, उनके शॉट्स पे जो रिवर्स जो उल्टे खेल रहे थे, रिवर्स वर्क कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा पेस चाहिए आपको बॉल के अंदर। पेस होगा तभी आप उसको शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से मार सकते हैं, लेकिन अगर आप में पेस नहीं, फ्लाइटेड बॉलें उनको आप मारोगे तो फाइन लेग पे कैच ही जाएगा। सबसे बड़ी गलती करी स्मृति ने, जो इतना बढ़िया बैटिंग करते करते 3 ओवर में ये 30 रन का स्टार्ट था, उसके बाद ये गलत शॉट खेला। 160 रन इस विकेट में मुझे कम लग रहे हैं, 180 का हमारा जो था कि 180 तो बनने चाहिए, लेकिन अब डिपेंड, विकेट स्लो है, स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं, तो ये मैच हो सकता है कि अगर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करें तभी हमारी, तभी मैच में कुछ फाइट।
0: सो कमिंग टू यू उत्तरा, नो क्रेज टेकन अवे फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स मार्जिन कैप 2 for 27 in 4, शबनम इस्माइल 2 for 22 in 4, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, something which I feel did the damage for the Indian innings were the 40 dot balls, almost 40.

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये 3 पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है, इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के

पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हरमनप्रीत कौर ने अपनाई थी उसमें अभी तक उनको पूरी कामयाबी मिलती हुई। चार गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया, शेफाली वर्मा, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी और श्रीचरणी, जिन्होंने अभी अभी एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई। लॉरा वॉल्फर्ट के रूप में अभी अभी उनको कॉटन बोल्ड किया, 20 रन बनाए लॉरा वॉल्फर्ट ने अपने इस बल्लेबाजी में और वापस जाती हुई। तस्मीन ब्रिज खेल रही है 5 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 11 गेंदे वो खेल चुकी हैं इन 5 रनों के लिए और 25 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 159 रन का पीछा करती हुई साउथ अफ्रीका की टीम। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में ये एक अहम मैच ग्रुप ए का खेला जा रहा है। हालांकि ग्रुप बी की जहां तक हम बात करें तो लगभग 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं। आज वेस्टइंडीज ने एक अहम मैच जीता श्रीलंका के खिलाफ और उन्होंने भी अपने 6 अंक अर्जित कर लिए। इससे पहले इंग्लैंड 6 अंक अर्जित करके सूची में सबसे ऊपर है और ग्रुप बी जो अभी तक पूरा खुला हुआ है उसका एक आज बहुत बड़ा मैच खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर, जिसमें 159 रन का पीछा कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम और ट्रैक्सन अभी टीम पर आती हुई।
1: जैक्सन देन दे नीड अ बिग पार्टनरशिप, टैस्मिन ब्रिज हैजंट रियली गॉट इनटू द नॉर्मल ग्रूव दैट शी डज, बट गिव फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स। श्री चांदनी रन द विकेट once again on the leg and middle, gentle roll of the wrist from Dirksen, and on the onside no runs result. Now Sri Chandni bowls wicket to wicket, doesn't give the ball much air, and really also changes the line and length of every delivery. The next one is well tossed up and she's bowled. Dirksen is clean bowled, a brilliant delivery. As I said, well tossed up. Dirksen's eyes lit up. She said, let me go after it. Talk it over. Completely missed. And that's wicket number 2 for South Africa.
0: ये होता है जी जाल में फंसाना, इसी बोलते हैं मछली को जाल में फंसाना। फ्लाइटेड गेंद और उठाकर मारने की कोशिश करी, गेंद में स्पिन आई जिसके लिए हरमनप्रीत ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय जो लिया था वो बिल्कुल सामने झलकता हुआ और बॉल ने स्पिन किया और ये एक बड़ी मछली एंड्री ड्रैक्सन के रूप में फंसी इस स्पिन गेंदबाजी की श्रीचरणी की और शून्य पर आउट होकर वापस जाती हुई और पावर प्ले में ये दूसरी विकेट अर्जित करी है श्रीचरणी ने अपने दूसरे ही ओवर में। 2 बल्लेबाज जो अभी तक आउट होकर वापस गए हैं, वॉल्फर्ट जो श्रीचरणी की शिकार बनी, खुद ही उन्होंने अपनी गेंद पर उसे कैच किया, और एंड्री ड्रैक्सन जो कि शून्य पर क्लीन बोल्ड बोल्ड बाय श्रीचरणी और एक बड़ी मछली को फिर से फंसाया अपने जाल में।
1: गिव द बॉल मोर एयर, अलाउड टू गिव द सरफेस, द बॉल टर्न्स फंडामेंटल्स, वी सॉ दैट इन दैट डिलीवरी। श्रीचरणी गिव द बॉल एयर, एंड्री डर्कसन्स आईज लिट अप, शी सेड लेट मी गो आफ्टर इट, टॉक इट ओवर द बॉलर्स हिट इट, द बॉल ग्रिप द सरफेस, टर्न एंड हिट द टॉप ऑफ ऑफ। श्रीचरणी this time once again giving the ball more air to the new batsman Marizan Kapp, played back along the wicket. Excellent delivery in the previous one. What a brilliant, it's a dream ball of a left arm orthodox bowler. 2 wickets, no runs so far in this over. Sri Chandni to Marizan Kapp, played straight to mid off. A maiden double wicket by Sri Chandni there. What an over, and the power play ends. South Africa struggling 25 for 2, now need to score at close to 9.6 from here on, chasing 159.
0: भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये जो अहम मैच खेला जा रहा ओल्ड ट्रैफर्ड पर, पावर प्ले में भारत ने 59 रन बनाए थे 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, यानी कि पहले 6 ओवर में भारत ने 59 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका ने पहले अपने पावर प्ले में यानी कि पहले 6 ओवर में 25 रन बनाए 2 विकेट नुकसान पर। भारत ने 13 डॉट बॉल्स खेली थी और साउथ अफ्रीका ने इस दौरान पहले पावर अपने पावर प्ले में 6 ओवर्स में 23 डॉट बॉल्स खेली हैं। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय गेंदबाज हैं, खासतौर पर जो भारतीय स्पिनर हैं, जिसकी वजह से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सफल होता दिखाई दे रहा है। 6 ओवर में 25 रन 2 खिलाड़ी नुकसान और 23 डॉट बॉल्स।
1: वन मोर चेंज द डिबिडन प्रेमा रावत नाउ outside the leg stump, and that's been pulled away around the corner. Will be cut off by Arundhati Reddy. A diving effort, and they're through for two. Brits goes up to seven with that. 132 needed from 83 deliveries. This is getting to be tougher. Required run rate around 9.5, and they've lost Laura Wolfart on so much, on whom so much depends, and also the wicket of Dirksen. Prema Rawat once again outside the leg stump. That will swept around the corner. Ricochets. A diving effort there by Smriti Mandhana, and they go through for one, they go through for two, and also good running between the wickets by the South Africans, getting three. They convert two into three over there, so that takes South Africa into their 30s now. 30 for two, and Tasman Brits is 10. Tasman Brits realizes now that she has to be the aggressor of the two, trying to take the attack to the debutan, knowing that there'll be nerves for Prema Rawat, and this is a good opportunity to get the up the scoring rate, if not boundaries, at least get twos and convert twos to threes. Five runs in the first two deliveries of Prema Rawat. 129 needed for South Africa of 82 deliveries from here on. So the run rate, as I said, is 9.44. The next one is turned round the corner for a single. So six runs in the first three deliveries. And this is good thinking by the Indian captain, Harmanpreet Kaur, rotating her bowlers. We've already seen five bowlers in operation so far, and this is just the seventh over.
0: South Africa ka score 31 run do khiladi ke nuksan par. Prema apne over ke agli gend aur halka sa usse push bhar kiya. Brits ne इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 32 रन. एक खिलाड़ी दो खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले प्लेयर वॉल्फार्ट 20 रन बनाकर आउट हुई, और डर्कसन ने बगैर स्कोरर्स को तंग किए हुए, जैसे कि हमारे रावत साहब हमें बता रहे हैं कि ये स्कोर अब रन रेट पहुंच चुका है 9.53 का. अगली गेंद और उसे कट करने की कोशिश, लेकिन स्क्वायर पॉइंट पर खड़ी फील्डर दीप्ति शर्मा ने उसे मुस्तैदी से फील्ड किया. वापस भेजा गया गेंद को प्रेमा रावत के हाथ में. प्रेमा रावत अपने ओवर की आखिरी गेंद, ऑफ साइड फील्ड, एक पैक फील्ड इस समय, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. अच्छी गेंद उठाकर मारने की कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं हुआ, और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रहा 32 खेल पर दो. साउथ अफ्रीका 7 ओवर की समाप्ति के बाद 13 ओवर जो बचे हुए हैं, उन 13 ओवर्स में 127 और रन चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका को 9.77 की औसत से. अभी जो स्कोर बन रहे हैं वो 4.57 की औसत से बन रहे हैं. भारत ने अभी तक 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. शिफाली वर्मा ने 2 ओवर किए हैं, नंदनी शर्मा ने 1, अरुंधति रेड्डी ने भी 1 ओवर किया है. प्रेमा रावत ने अपना पहला ओवर अभी भी समाप्त किया, और श्री चरनी ने अपने 2 ओवर में 1 मेडन, 2 रन और 2 बहुमूल्य विकेट्स अपनी टीम के लिए अर्जित किए हैं. वॉल्फार्ट को 20 पर कॉटन बोल्ड किया, और ड्रेक्सन को अपनी ही गेंद में क्लीन बोल्ड किया.
1: 32 फॉर 2 एंड द एक्सपीरियंस दीप्ति शर्मा कम्स इन. ऑल द ड्रामा हैज हैपेंड.

0: before Deepti Sharma comes in. That tells you. And the reverse sweep comes out from Tasmin Brits. That will carry down to the boundary for four.
1: और 14 गेंदों के बाद ब्रिट्स के बल्ले से ये चौका निकला है साउथ अफ्रीका की टीम के लिए और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा हुआ 36 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 7.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद दीप्ति शर्मा छठे बॉलर के रूप में कप्तान हरमनप्रीत ने उनका इस्तेमाल किया राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ब्रिट्स तैयार हैं गेंदबाजी का सामना करने के लिए और उसे हल्का सा पुश किया और पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने के लिए हालांकि डायरेक्ट हिट लगी हाथ उठाया जरूर गया था लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर ने उसे नकार दिया क्योंकि बल्लेबाज अपनी छोर पर अपनी क्रीज पर पहुंच चुके थे
0: शॉर्ट लेंथ दैट वाज एंड दैट वाज पुल्ड अवे डाउन टू शॉर्ट फाइन लेग हाफ हार्टेड वाज रिच घोष एज अ थ्रो केम इन to the striker's end direct hit but no harm for South Africa five coming of the first two deliveries Deepti Sharma once again down the leg side to Barizan Kapp this time who wants to play the sweep once again so slow was the ball off the wicket that Kapp almost goes through with it and then the ball comes after that in fact takes the reverse of the bat on its way back Deepti Sharma this time pick up and once again that's miscued. Will go down to long arm but not exactly as Kapp would have probably wanted to. The ball was in the air for a fair length of time.
1: Marjan Kapp ने हालांकि इसको उठाकर मारने की कोशिश करी थी लेकिन पूरी तरह नाकामयाब रही गेंद दीप्ति शर्मा से थोड़ी सी दूर थी इसलिए वो उसे लपक नहीं पाई अपने अगले बॉल के साथ खुद फील्ड किया अच्छी गेंद बिल्कुल सीधी ताकि बैट्समैन को मौका ही ना मिल सके और इस समय साउथ अफ्रीका 38 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 7.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद अपने ओवर की आखिरी गेंद और उसे उठाकर मारने की कोशिश की गई जी हां छका दिया उन्होंने फील्डर को हालांकि कोशिश पूरी करी गई थी लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकलकर पीछे जाती हुई और पर्याप्त समय था दो रन अपने बल्ले के साथ अपनी टीम के लिए जोड़ने का ब्रिट्स को ब्रिट्स पहुंची 18 पर कैप खेल रही हैं दो पर और साउथ अफ्रीका 8 ओवर्स की समाप्ति पर 40 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 5 रन प्रति ओवर की औसत से गेंद बल्लेबाजी हो रही है और 9.92 रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर पहुंचता हुआ
0: Yeah, South Africa clearly realizing that they need to do something different because we saw twice an attempt in that over of Deepti Sharma to go for the reverse sweep. The required run rate is 9.92, which means that almost 10 and over. So even if they score at a 6 or 7 and over, this run rate will keep creeping up. And when it goes beyond 12 and over, it gets to be very, very difficult. Even if you have some big batters, so South Africa from here on will certainly want to ensure they don't keep the run rate going up too much. The next first ball of a fresh over from Arundhati Reddy. A run that off stump, just a shade outside off, played into the covers and a dot ball once again. This is excellent thinking by Harmanpreet Kaur, rotating the bowlers beautifully, realizing that South Africa under pressure, now bringing in Arundhati Reddy by way of pace.
1: अरुंधति रेड्डी ने अपना पहला ओवर में 9 रन दिए थे और अपने दूसरे ओवर के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं पहली ओवर डॉट बॉल थी और दूसरी गेंद जो थी उसमें एक रन चुराया बॉल को लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया गया और कैप के स्कोर पहुंचा 3 पर और ब्रिट्स खेल रही हैं 18 पर एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रही हैं दोनों बल्लेबाज काफी एक्सपीरियंस है दोनों के पास और साउथ अफ्रीका की नजरें इन दोनों बल्लेबाजों पर होंगी ताकि इस गेम को इस पार्टनरशिप को कुछ लंबा किया जाए
0: और इन द रेडी टू टैस्मन ब्रिज फ्रॉम क्लोज टू द स्टंप्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप ड्रिवन इनटू द कवर्स अ लिटिल बिट ऑफ अ रिकोशे गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द बैटर्स टू गो अक्रॉस फॉर अ सिंगल एंड दैट सिंगल विल टेक साउथ अफ्रीका अप टू 42 फॉर 2 नाउ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रन्स एंड बॉल्स 117 नीडेड ऑफ 69 डिलीवरीज द इक्वेशन इज गेटिंग टू बी टफर नाउ क्लोज टू 10

0: 0.2 the required run rate for South Africa, as here is Arundhati Reddy. Converted that into a full toss, drilled down to wide long arm. They go through for one, want a single, which is not there really. And they have to be content with just a single. Prema Rawat, the debutant, the fielder on that occasion. 116 needed from 68 deliveries. Now the last delivery from Arundhati Reddy, slower through the end, just 97 kilometers per hour, giving no pace on the ball at all to the batters. Here is Arundhati Reddy into Tasman Bint, this time short in length, and just a one will result. That's played on the onside. They want a single, which is not there.
1: Abhitak is over me. चार सिंगल्स आए हैं और शीश अनी ने जो अपने पहले दो ओवर किए थे उन्होंने दो रन देके दो विकेट्स जो अर्जित करी थी उसका प्रेशर अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर दिखती हुई है. कैप ने अभी तक 10 रन चार रन बनाए हैं 10 गेंदे खेलने के बाद और ब्रिट्स 20 रन पर खेल रही हैं अगली बॉल और मारने की कोशिश लेकिन फिर नाकामयाब रही. स्क्वेयर लेग के फील्डर के पास गेंद पहुंची, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय अपने अपने छोर बदलने का. ओवर की समाप्ति और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है साउथ अफ्रीका का 45 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर और बाकी जो 11 ओवर यानी कि 66 गेंदें बची हैं उन पर 114 रन उनको चाहिए 10.38 की औसत से.
0: 10.36, 10.4 the required run rate. The last wicket fell when the score was 25. So these two have added 45 for the third wicket. So this is the biggest partnership so far. They've got to lick in these two, Kapp and Tasman Brits. But they can't wait for too long before upping the ante. It's only 10.4 now. So every over where you score less than 10 runs are over is going to increase that and take it to 11, 12 and 13. First ball of a fresh over from Prema Rawat. That's played over the infield on the offside down to the extra cover boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: मार्जन कप के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ प्रेमा का ये गेंद था. थोड़ा सा फ्लाइटेड जरूर था लेकिन इनसाइड आउट हुई और उसे कवर बाउंड्री के ऊपर से उन्होंने 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया. इसीलिए इनका शुमार वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं उनमें किया जाता है, गेंदबाजी के रूप में भी और बल्लेबाजी के भी. ये दोनों में सक्षम है और इसका आज बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी साउथ अफ्रीका की टीम को कि मार्जन कैप किस अंदाज में और कितनी देर तक बल्लेबाजी करती हैं. अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे उठाकर मारा है 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: अंपायर की तरफ से इशारा है.
0: As you can see at the boundary at backward square leg and it was airborne for a fair length of time and magnificent attempt there but just eluding. Oh, that just took the fingertips and went over the boundary for a 6. But one must give full credit for the attempt that was made on the square leg boundary over there. So, but from South Africa's perspective, 10 runs in the first 2 overs. And this is what we were discussing. They'll probably go after the debutant in this particular over, Prema Rawat. Here is, that's once again down the leg side. And she says, was it that a wide? It is a wide.
1: और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से 56/2 9.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद. भारत ने अपने पहले 50 रन बनाए थे 26 गेंदों का सामना करते हुए और साउथ अफ्रीका ने अपने पहले रन बनाए 56 गेंदों का सामना करते हुए. भारत साउथ अफ्रीका ने अपने 50 रन बनाए और अगली गेंद को डीप कवर्स की तरफ पुश किया गया. बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन चुराने का और इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें हुई हैं और इसमें एक वाइड है. 57 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 63 बॉलों में 102 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस रन चेज को पूरा करने के लिए. अगली गेंद आगे निकलकर मारने की कोशिश लेकिन प्रेमा ने खुद फॉलो किया बैट्समैन को और मजबूर किया कि उसे रक्षात्मक तरीके से खेला जाए और खुद गेंद को फील्ड किया.
0: 32 of 25 deliveries this partnership, so they're getting into a groove. A few overs like this and you know these two have the ability. Here's the last delivery of Prema Rawat, just a trifle short, that's been pulled away down to mid wicket halfway down to the boundary, and before the return can come, they're through for a single. And the three boundary riders are deep square leg, deep mid wicket, and long on, on the onside. And should there be anything short, the batters will try to pierce it through that gap, those two gaps that are there. As here is Premar Rawat, the last time in this over, wide of the off stump, waits for it, does by his hand cap, steers it down to the fielder inside the 30 yard. That is Deepthi Sharma, direct hit. Richa Ghosh goes up. Will the umpire refer it? And she says, no, I'm quite happy. And this over has cost India 16 runs. And at the end of 10 overs, halfway mark, South Africa chasing 159 for 2, 100 needed in the remaining 10.
1: 10 ओवर में 100 रन चाहिए, यानी कि 10 रन प्रति ओवर की औसत से अब साउथ अफ्रीका को ये स्कोर चेस करने के लिए रन बनाने पड़ेंगे. आखिरी ओवर पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के पाले में गया, 17 रन आए उस ओवर में. और दोनों बल्लेबाज मैरिजोना का 17 पर खेल रही हैं, और ब्रिट्स अब अपने पैर जमाती हुई, अपनी आंखें जमाती हुई पहुंच गई हैं 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर. 22 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, उसमें एक चौका शामिल है. और मैरिजन कैप ने अभी तक 15 गेंदों में 17 रन बनाए हैं, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है. 113.33 की औसत से वो अभी तक बल्लेबाजी कर रही हैं. 59 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. शेफाली वर्मा ने 2 ओवर में 9 रन दिए हैं. नंदनी शर्मा ने 1 ओवर में 5 रन, अरुंधति रेड्डी ने 2 ओवर में 14 रन, श्री चरनी ने 2 ओवर 1 मिडन 2 रन 2 विकेट. नंदनी अपने ओवर के साथ राइट आर्म ओवर स्टंप्स, ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, कवर्स में उसे धीरे से पुश किया, पर्याप्त समय था बल्लेबाजों को छोर बदलने के लिए. और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 60 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर. 10.1 ओवर्स की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज अब तक कर चुके हैं. मैरिजन कैप खेल रही है 18 पर. ब्रिट्स अब सामना करेंगी नंदनी के ओवर का दूसरी गेंद का, जो 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है. नंदनी शर्मा राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे उठाया है लॉन्ग ऑन का फील्डर. एक बार तो दिलचस्पी जरूर ले रहा था इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद उनसे काफी आगे गिरी और उनको फील्ड किया गया, वापस थ्रो किया गया, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के लिए. 61 पर स्कोर पहुंचा.
0: Yes, I got the feeling that she wanted it played over long off, did Brits, and the ball came slower off the wicket, and that's why it went over the bowlers and in the air, but well short of Radha Yadav there. Two singles in this over so far, 98 needed of 58. Nandini Sharma. Right to the block hole, well bowled, slower through the air, and Marizan Kapp can do no more than push it back along the wicket. And Richa Ghosh from behind the stumps applauds that delivery. This is getting to be a good over. Remember, the last one was a touch expensive. This was a slow ball, right to the block hole there. Very well bowled by Nandini Sharma, and she's happy with it. The wicketkeeper is happy with it. Just the 2 runs in the first three deliveries. Nandini Sharma to Marizan Kapp, and this time she wants to go through with this stroke, and once again very, very well bowled. So this is getting to be a very good over, and Marizan Kapp has to concede another dot ball as the ball goes through.
1: स्कोर 61 पर. 61 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर. 10.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, और इस ओवर में एक बहुत ही अहम जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है मैरिजन कप और नंदनी के बीच में. लेग स्टंप के बाहर उसे स्कूप किया, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: This time the experience, Marizan Kapp getting better of Nandini Sharma, picks it up from outside off and deposits it over the fielder there inside the 30 yard circle and fine leg, well over her, soaring over her down to the fine leg boundary for 4. So 6 runs in this over so far. Remember, they need around 10.25. Can Nandini Sharma end this well? Kapp will lead the boundary. Last ball coming up and Cup sweeps it around the corner. Will she get it down?

0: उसके बाद अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी करी है। करीब करीब अभी ये पार्टनरशिप 42 रन तक पहुंच गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बहुत अहम ये पार्टनरशिप है साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव को लेकर, क्योंकि अगर इस मैच में बने रहना है। दीप्ति शर्मा ने ओवर की शुरुआत करती हुई ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और उसे स्क्वेयर लेग की तरफ खेलना चाहती थी, ब्रिट्स नाकामयाब हुई, गेंद उनके शरीर पर लगी, कोई नुकसान नहीं, कोई स्कोर नहीं। स्कोर 67 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 11.1 ओवर्स के बाद 53 गेंदों में 92 रन चाहिए।
1: डाउन द विकेट कम्स ब्रिट्स टू द नेक्स्ट डेलिवरी फ्रॉम दीप्ति शर्मा, हॉइस्ट इट हार्ड एंड हाई फॉर अ सिक्स ओवर द बॉलर्स हेड।
2: ये लगा आभा का छक्का,
0: बेहतरीन शॉट था ये ब्रिट्स का, आगे आई और बल्ले को पूरी तरह गेंद के नीचे लाकर जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रोक और 76 मीटर लंबा ये छक्का था ब्रिट्स के बल्ले से निकला हुआ, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचाओ 73 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली गेंद मारना चाहती थी और ये अपील आउट, अंपायर की तरफ से इशारा आउट का, लेकिन ब्रिट्स ने थर्ड अंपायर से मदद मांगी है कि क्या यह गेंद उनके बल्ले को लगकर पैड पर गई है।
1: शी सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट द मोमेंट द अंपायर गिव इट आउट शी वेंट अप इमीडिएटली, इफ शी इज नॉट गॉट बैट ऑन टू दैट दैट वाज डेड स्ट्रेट, सो द ओनली थिंग इज शी फील शी गॉट ग्लव और बैट ऑन टू दैट as the third umpire is having a good look at that, was there an inside edge onto that is what the third umpire will have a look at, and that will tell us whether there was bat onto that, and it does appear that probably there was bat onto that, and the umpire will have to reverse the decision. So very clearly Tasman Brits knew that there was bat onto that and she got it spot on. 86 needed of 51. 6 runs in 3 deliveries from Deepti Sharma so far. And this is going to be a very interesting contest because now the South Africans will want to up it. It's around 10 runs and over. As we keep saying, they don't want to take it too high. Next delivery from Deepti Sharma down the wicket comes Brits and drives it in a controlled manner down to mid-wicket right on the boundary, and they get a couple for that. Now what the South Africans are doing to counter the Indian spinners is using their feet, trying to come to the pitch of the delivery, and good stop there right on the mid-wicket boundary by Radha Yadav, who's one of the better fielders in the Indian squad. 50 partnership of 37 deliveries. Marizan Cup getting 24 of that and 25 to Tasman Brits. Right in the block hole, drilled away down to long on, and they go through for one. With that single, 76 for 2, 83 needed of 49.
0: 11.5 overs ki jo गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों ने करे उसमें 76 रन बने हैं। 49 बॉलों में 83 रन और चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए, और भारत को चाहिए 8 विकेट्स इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि इस ओवर में एक अपील थी जिसे वापस किया गया, अगली गेंद हल्का सा पुश भर किया गया लॉन्ग ऑन पर जमीमा के पास। जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। 12 ओवर की गेम की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 77 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। मैरिजन कप खेल रही है 25 के अपने व्यक्तिगत योग पर। 21 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। इस 25 रनों में 2 चौके और 1 छक्का शामिल है, और तास्मिन ब्रिट्स जो अब बहुत ही मुस्तैदी से अपनी आंखें जमा चुकी हैं और एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पारी खेल रही हैं। 31 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर हैं। 28 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, 1 चौका और 1 छक्का जो उन्होंने पिछले दीप्ति शर्मा के ओवर में लगाया था उसके साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर है 31 रन। साउथ अफ्रीका का स्कोर है 77 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद 6.42 के रन रेट पर अभी बल्लेबाजी हो रही है, और 10.25 की औसत चाहिए। अगली गेंद श्री चरनी की, अच्छी गेंद वापस खेला उसे कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर से।

0: अपने जो मेन बॉलर है श्री चन्नी को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया है। सिर्फ उनकी मंशा यह है कि विकेट हासिल करी जाए अगली गेंद, और उसको उठाकर मारा है, और ये एक कैच की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रहे। गेंद सीमा रेखा पर फील्ड करी गई, एक अच्छी फील्डिंग का मुजहरा। राधा ने गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर करी थी लेकिन गेंद उनके हाथ से छटकी। दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, एक अच्छा प्रयास जरूर था, लेकिन क्रिकेट को जब आप इस लेवल पर खींचते हैं तो ऐसे कैचेस पकड़ने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने अपनी टीम को जीत के लिए अग्रसर करना हो। श्री चन्नी अपने ओवर की अगली गेंद सामने उनके मार्जिन का, और इस गेंद को उन्होंने उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, चार रन।
1: वेल टॉस्ड अप बाय श्री चन्नी दिस टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप।
0: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा हुआ 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। मैरिजन कप जैसे खिलाड़ी को आप अगर जीवन दान देंगे तो वो अपनी प्रतिभा का जौहर आपको जल्दी दिखाएंगी, और अगले ही गेंद पे उन्होंने चौका जड़ा, जिसे कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कने की बात। और स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप जो है वो अब पहुंच गई है 31 के अपने व्यक्तिगत योग पर, और साउथ अफ्रीका 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। श्री चन्नी अपने ओवर की अगली गेंद, और उसे हल्का सा पुश भर किया डीप मिड विकेट पर, बॉल को फील्ड किया गया लेकिन बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि जमीमा रॉड्रिक्स का जो थ्रो था वो बिल्कुल विकेट के ऊपर था, लेकिन ब्रिट्स और मैरिजन कप ने अपने अपने छोरों को अच्छे से संभाल के रखा, और ये दो रन के साथ स्कोर पढ़कर पहुंचा 85 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर।
2: दिस इज वॉट यू कैन अचीव इफ यू ड्रैग द बैट वेरी वेल ड्रैग्ड इन बाय टैस्मन ब्रिट्स ओवर देयर, एंड नाउ 85 for 2, 74 for 44, लास्ट बॉल पेनल्टी बट बॉल ऑफ द ओवर कमिंग अप डाउन द लेग साइड दैट्स बीन लॉफ्टेड ओवर फाइन लेग फॉर फोर।
3: ये लगा आभा का चौका।
0: मैरिजन कप अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाती हुई, जो अभी अभी उन्हें एक जीवन दान मिला था उसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का जलवा और दिखाना शुरू किया, और इस खूबसूरत चौके के साथ उनका स्कोर पहुंच गया 37 रन, और श्रीलंका माफ कीजिएगा साउथ अफ्रीका बढ़ती हुई आगे तेजी से 89 for 2, 12.4 ओवर्स के बाद 43 गेंदों में 70 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच जीतने के लिए। शिचनी अपने ओवर की आखिरी गेंद, और उस गेंद को हल्का सा डीप मिड विकेट की तरफ मोड़ा, और एक रन चुराया बल्लेबाजों ने, 90 पर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का स्कोर इस सिंगल के साथ, और 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका 90 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। बाकी बचे 7 ओवर यानी कि 42 गेंदों में 69 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को जीतने के लिए, और भारत को अब बहुत जल्द चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका की कुछ विकेट्स इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। हालांकि पिछले ओवर में एक मौका जरूर लगा था लेकिन कैच को लपका नहीं गया, और जीवनदान मिला मैरिजन कप को, और मैरिजन कप ने उस जीवन दान के बाद अपने बल्ले को घुमाना शुरू किया, दो चौके उन्होंने उसके बाद जरूर लगाए, और स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ साउथ अफ्रीका का 90 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
2: दिस पार्टनरशिप हैज बीन गुड फॉर साउथ अफ्रीका 65, कैप इज 38, टैस्मन ब्रिट्स इज 31, द रिक्वायर्ड रन रेट इज 9.9 ऑलमोस्ट। Now, 7 overs remain. If these two stay there for another 2 or 3 overs, then South Africa can probably think that even 10 or 11 per over is possible with wickets in hand. From India's perspective now, India would like to get a wicket or two if possible over here, because these two are well entrenched, are Marizan Cup and Tasman Bridge. Both of them are really looking good. Remember, the last over from Shri Chandni was expensive. She bowled so well in her first two overs, and in the last over, we saw her getting pummeled for boundaries as well. 69 needed of 42, and one of the reasons has been that Karp and Brits have started using the feet, not allowing the

0: ball to grip and turn, getting to the pitch of the ball and playing ground strokes as well as lofted strokes, and also hit a couple of sixes. Shefali Verma coming in. This time to Marizad Kapp, short in length, and that's been hit away into the covers. And that's well fielded by Deepti Sharma. No runs on dot ball. Every dot ball will matter. Every boundary will matter. And every good fielding effort will matter. Indians have said four to six runs already. Shefali Verma short in length, and that's played past mid-on inside the 30-yard circle for a single. Singles are okay from India's perspective. South Africa will certainly need boundaries from here on. Kapp is 31, Brits is 31, Kapp is 39, partnership is 66, 10.2 the required run rate from here on. And this one is played into the covers. They want to run and they get it in the end also. Good calling, good response. But from India's perspective, Shefali has started quite well over here. Just two runs of three deliveries. She's cutting pace on the ball. 67 needed of 39 deliveries. Both the dugouts are quite tense because next two or three overs will define which way this is going. Shefali gives that ball more air. Drilled too long off. One of the things we've seen in this over is they're not giving the ball too much air, not allowing the batters to use their feet, come to the pitch of that punt. She's holding it back. And after quite three or four overs, we've seen the ball being pitched short, faster through the air.
1: बिल्कुल जी, अगली गेंद और उसे धीरे से पुश भर कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए. लॉन्ग हैंडल्स का इस्तेमाल हल्का हल्का सा मैरिजन कप की तरफ से किया गया. जो उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए, दो चौके लगाए, वो लॉन्ग हैंडल्स के साथ उन्होंने दो चौके लगाए थे. और उसके साथ अब भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचना शुरू किया और फ्लाइट को भी कम किया, जिससे बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हुई. मैरिजन कप खेल रही है 40 के अपने व्यक्तिगत योग पर. शेफाली वर्मा के ओवर की आखिरी गेंद और एक तेज स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के खड़े फील्डर्स के पास. एक रन के लिए पर्याप्त समय था. 14 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का 95 रन दो विकेट्स के नुकसान पर. अगली 36 गेंदों में 64 रन दरकार है साउथ अफ्रीका को. इस मैच को जीतने के लिए भारत ने 158 रन बनाए थे अपने पहले 20 ओवर्स में, और अब बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने अभी तक 14 ओवर्स में. बाकी 6 ओवर्स में 64 रन उन्हें बनाने हैं 10.67 की औसत से. अच्छे बल्लेबाजी, अच्छा पार्टनरशिप दोनों ने बिल्ड किया. अभी तक 70 रन बनाए हैं इन्होंने तीसरे विकेट के लिए. मैरिजन कैप्स खेल रही हैं 41 पर और ब्रिट्स खेल रही हैं 33 के अपने व्यक्तिगत योग पर. भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. शेफाली वर्मा ने 3 ओवर किए, 14 रन दिए हैं. नंदिनी शर्मा ने 2 ओवर किए हैं. अरुंधति रेड्डी 2 ओवर, श्री चरनी ने 3 ओवर किए हैं. प्रेमा रावत ने 2 ओवर किए हैं, जो उनका पहला मैच है. और दीप्ति शर्मा ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं. तर्मिन ब्रिट्स और मैरिजन कप ने दोनों के बीच में ये चौथीवां अर्धशतकीय साझेदारी है. इससे पहले उन्होंने 69 रन की साझेदारी करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, 58 रन की भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 में, 96 रन की भारत के अगेंस्ट 2024 में, और आज 70 रन से ऊपर वो जोड़ चुकी हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस ग्राउंड में. एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये एक अहम मैच जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर खेला जा रहा है.
0: सिक्स ओवर्स लेफ्ट नाउ इन दिस इनिंग्स एंड यू नो श्री चरनी हैज गॉट वन ओवर लेफ्ट, शी विल डेफिनेटली बोल दैट. Shefali Verma has got one, she'll bowl that. Now, after that, four overs. Deepti Sharma has got two overs left, definitely she'll bowl that. So, what is interesting to see, the remaining two overs out of the six, after Shefali bowls one over, Sri Chandi bowls one, Deepti bowls two, two more will remain. And Nandini Sharma, Arundhati Reddy and Prema Rawat, the three bowlers that we've seen apart from Shefali, Sri Chandni and Deepti, who will get the remaining two overs, may not be the debutant Prema Rawat. She's been expensive, can't blame her, it's her first game. It could probably be two overs shared between Nandini Sharma and Arundhati Reddy. That could be the way in which the remaining six overs could be bowled.
1: भारत ने अब जब पहले बल्लेबाजी करी थी अपने 20 ओवर में 158 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 39 डॉट बॉल्स थी, 18 चौके उसमें शामिल थे और एक छक्का भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए थे अपने 158 रन पूरा करने के लिए.
0: First ball of a fresh over, and we'll have to wait and watch who actually starts off the bowling operations first for the first ball of a fresh over. But from India's perspective, we've seen some wonderful fielding as well as just the odd catch that was dropped. One would say that was a good attempt, actually, to be very fair to Radha Yadav, rather than say that was a drop catch. It was a wonderful effort. She's one of the better fielders India's got. So six overs remaining now, and 10.67 the required run rate. And this partnership has yielded 70. Yes, Arundhati Reddy, we said she'll probably bowl one over. She's got the ball in her hand. And South Africa now 95 for 2. Required run rate 10.67 from here on. From close to the sums, full toss. That's been clubbed away. But there is a fielder there, Jemima Rodrigues, patrolling that boundary at mid-wicket. Just the one. 63 of 35 from here on for South Africa to go through. If one more to look at it, this is even more a crucial game for South Africa than it is for India, while it's important for both, because India, if they win here, they'll be in the driver's seat. Arundhati Reddy, and that's been lofted over the bowler's head. That'll go down a couple of bounces to the side screen for four.
1: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर साउथ अफ्रीका का पहुंचा हुआ 3 अंकों पर 100 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर 14.2 ओवर्स के बाद ये स्कोर 100 पर पहुंचा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और सीधे बल्ले से उसे उठाकर मारा बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर पैड पर लगी और भागकर 1 रन चुराया और स्कोर इस 1 रन के साथ 101 पर पहुंचा। दो खिलाड़ी के नुकसान पर 14.3 ओवर्स के बाद साउथ अफ्रीका ने अपने पहले 50 रन पूरे किए थे 56 गेंदों पर, और दूसरे 50 रन हमारे स्कोरर रावत जी बता रहे हैं उन्होंने 30 गेंदों में पूरे किए। इसका मतलब बल्लेबाजी अब काफी तेज हो रही है। अरुंधति रॉय अपने ओवर की अगली गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे स्कूप कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: Bad ball from Arundhati Reddy down the leg side, and all that the batter had to do is help it on its way, which she did so beautifully. Marizan Kapp just lofting it nonchalantly down to the fine leg boundary for 4. Turning out to be expensive this over from Arundhati Reddy. 54 of 32 now, 14.4 overs, 5 point to go after this. Partnership is now worth 80. And the required run rate just a touch over 10.13. Remember, the last wicket fell when it was 25. Looks like a long, long time back. How do they ready? This time to Marizan Kapp, who picks it up from outside the off stump and deposits it down to the mid wicket boundary for 4 more.
2: Ye laga abha ka chauka.
1: और इस चौके के साथ मैरिजन कप का अर्धशतक पूरा, 34 गेंदों में इन्होंने अपने ये अर्धशतक पूरा किया। इन 50 रनों में 6 चौके शामिल हैं और एक खूबसूरत छक्का इस ओवर में अरुंधति रेड्डी के ओवर में। इस ओवर में अभी तक वो 3 चौके जमा चुकी हैं, 3 चौके आ चुके हैं, और मैरिजन कप दिखाती हुई अपने बल्लेबाजी का जौहर और क्यों उन्हें विश्व का सर्वोत्तम ऑलराउंडर माना जाता है, उस लिस्ट में उनका नाम बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है। आज साउथ अफ्रीका के लिए एक अहम पारी खेलती हुई, अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे हल्का सा पुश भर किया, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बड़ी मुस्तैदी से 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने, और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 52 और 111 दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15 ओवर में। मैरिजन कप की यह 6वीं अर्धशतकीय पारी थी, उनके बल्ले से आए हुए ये 6वीं अर्धशतकीय पारी थी उनके करियर की, और आज इस महत्वपूर्ण और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए अभी तक 52 रन अर्जित किए हैं और अपनी टीम को मुश्किल वाली जो छोर था उसमें से बाहर निकालने की अपने पूरी कोशिश करते हुए, जो रन रेट एकदम एक समय बढ़कर 10.9 तक चल गया था वो अब घटकर 9.6 रह गया है, यानी कि बचे 5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 48 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए.
0: Yes, indeed. This partnership is now taking the match down to the wire. They are making a fight of it. 111 for 2. Kapp is 52. Dasmond Blitz is 37. This partnership 86. And that's come at a very good run rate as well, particularly in the last 2-3 overs. The last over from Arundhati Reddy was 16 runs. Very, very expensive. The most expensive of this inning so far. Deepti Sharma has the ball in hand. 48 of 30 needed. From outside the off stump, she wants to pummel it, does Brits. And the ball ricocheting on the onside for just a one. Should be leg byes. And the impact was certainly outside off. The Indians having a thought there, but very clearly inside, very impact very clearly outside off. Now Harmanpreet Kaur has a word with Deepti Sharma. Some thoughts being exchanged, because these next couple of overs are going to be so important in the context of this game. If South Africa manage to get a couple of more good overs, they can take it through. But if India can squeeze South Africa in the next couple of overs, beginning from this one, from Deepti Sharma, she's got all the experience behind her. Some readjustments being made in the field. One thing is get the field in place. The other is break the momentum. Remember, South Africa have got two good overs. So one way is to take your time and break the momentum. The momentum that's been developed now by Marizan Kapp and Tasmin Brits. That's a good idea as well.
1: 112 दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद और अब दीप्ति शर्मा बिल्कुल तैयार. राउंड द स्टंप से ये गेंदबाजी कर रही है और उसे हल्का सा ग्लाइड किया स्क्वायर बाउंड्री की तरफ. डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, एक रन चुराया बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 113 दो खिलाड़ी के नुकसान पर. 7 से 15 ओवर्स में भारत ने 57 रन बनाए थे 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर. 16 डॉट्स खेली गई थी और इसी दौरान 7 से 15 ओवर में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 86 रन बनाए हैं और 13 डॉट्स इनमें खेली गई हैं. आंकड़ों के हिसाब से अगली गेंद और बहुत तेज शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री को रोककर 2 रनों में तब्दील किया जेमिमा रॉड्रिक्स ने, लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 115 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर. 6 हाफ सेंचुरीज जो मैरिजन कप ने अभी तक बनाई है, 75 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, 60 रन श्रीलंका के खिलाफ, 57 रन भारत के खिलाफ, 56 रन पाकिस्तान के खिलाफ. आज भारत के खिलाफ अभी वो 53 रन पर खेल रही हैं और इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 52 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी. स्कोर 115 रन 2 खिलाड़ी को नुकसान पर 15.3 ओवर्स में. 27 गेंदों में 44 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए और भारत को जल्द जल्द कुछ विकेट्स ताकि मैच में वापसी करी जा सके.
0: 44 of 27 comes down the wicket once again. Tasmin Brits drives it in a controlled manner to long on. 116 for 2. Fielded there by Jemima Rodrigues. And so this over so far, no boundaries in the Deepti Sharma over. Will she end it well? 116 for 2. 43 of 26 needed from here on. Deepti Sharma so far conceding only singles in this 16th over. Round the wicket and once again ball very close to the tab lines, have been driven, will be cut off by Shefali Verma. Wide of long off inside the boundary, they go through for a couple. So this is a good over, just the singles and the couple in the last ball. 41 of 25 needed now. Remember, the required run rate is now just under 10. So can she end it well, Deepti Sharma? Not concede a boundary. A single or two will do, because that will then up that required run rate even further. 9.84 it is right now. From round the wicket to Marizan Kapp, who's drilled it. Pass extra cover to the boundary for 4.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: मार्जन काप के बल्ले से ये निकला बेहतरीन शॉट, कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन, फुल टॉस गेंद थी, न्योता दिया गया था मार्जन काप को शॉट खेलने के लिए और उस न्योते को उन्होंने स्वीकारा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया।

0: 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप की एक बेहतरीन पारी जो अभी तक उन्होंने खेली है 59 रनों की, और साथ में उनका साथ दे रही हैं ब्रिक्स जिन्होंने अभी तक बनाए हैं 40 रन अपनी बल्लेबाजी में, और ये 40 रन के लिए उन्होंने 35 गेंदों का इस्तेमाल किया है। मैरिजन कप जो अभी तक खेल रही हैं 59 के अपने व्यक्तिगत योग पर, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है। 155.226 की औसत से ये बल्लेबाजी कर रही है। 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर पूरी तरह गिरफ्त बनाई हुई है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इस मैच पर, जो एक समय पे जो रन रेट था वो 10 से पार था, अब वो घटकर 9.25 रह गया है। अगले 24 जो गेंद है, जो 24 गेंदों में 37 रन की जरूरत है साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को अपने नाम करने के लिए, और वहीं भारतीय खेमा चाहेगा कि इस पारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, इस जोड़ी को जल्द से जल्द अलग किया जाए ताकि प्रेशर वापस साउथ अफ्रीका पर डाला जाए।
1: शी चर्नी हैज गॉट वन ओवर, शी इज बॉल 3 for 15 विद 2 विकेट, सो सर्टनली शी विल बॉल 1 ओवर। 4 overs in the South African innings so far. Shefali has bowled 3 for 14, so she'll bowl 1 over. Those will be 2 overs for sure. Another 2 overs. Deepti Sharma has been a touch expensive today. 28 she's conceded of 3. And but she's got all the experience and she bowls at the death for India. So she'll probably get 1. And then there's 1 over to be bowled amongst Nandini Sharma, Arundhati Reddy, and Prema Rawat. So it's Shefali Verma, as I expected, with the ball now to bowl what will be the 17th over, as 37 is needed of 24. Cup and Brits together 97 this partnership, close to 100. What a partnership this has been for South Africa after they lost Wolfart and Dirksen relatively early. 122 for 2 now. Indians have also bowled in a disciplined manner so far, just the 3 extras, and of which 2 have been leg by, so just the 1 wide. We saw South Africa bowling very disciplined manner in 20 overs. They conceded just the 1 wide. India also so far in 16 overs, just the 1 wide ball. First ball of Shefali on Buzz Overs, lofted hard and high, taken there right on the mid-wicket boundary. That's the wicket India wanted. Desmond Britt goes. A crucial wicket at a very important juncture.
0: 97 रन की ये भागीदारी शेफाली वर्मा ने अपने हाथों से तोड़ी, और एक अच्छा कैच केयर लेग बाउंड्री के ऊपर, और ब्रिट्स आउट होकर वापस जाती हुई। 40 रन का उनका योगदान रहा इस 97 रन की जो भागीदारी थी। हालांकि स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर से वो एक लंबा शॉट खेलना चाह रही थी, लेकिन नाकामयाब रही, और एक अच्छा कैच पकड़ा गया बाउंड्री के ऊपर श्री चरनी द्वारा, और तस्मीन ब्रिट्स 40 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर वापस जाती हुई। 39 रनों के लिए उन्होंने 36 गेंदें खेली और वापस श्री चरनी के हाथों कैच हुई। शेफाली वर्मा ने ये एक अहम विकेट दिलवाया जिससे भारतीय टीम अब वापसी करने की कोशिश जरूर करेगी। 122 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर साउथ अफ्रीका 16.1 ओवर की समाप्ति के बाद शेफाली वर्मा अपने चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक अहम भागीदारी को तोड़ने में कामयाब हुई, और श्री चन्नी ने बगैर किसी गलती से उस कैच को लपका, और अब नए बल्लेबाज नादीन डी क्लार्क क्रीज पर, जिनके नाम पर 61 मैचेस हैं, शेफाली वर्मा की अगली गेंद को खेलते हुए। अच्छी गेंद, एकदम यॉर्कर, और एक अहम समय पर उनका बल्ला नीचे आया और गेंद बल्ले से लगकर शॉट थर्ड मैन के फील्डर के पास गई बिना किसी स्कोर के, बिना किसी नुकसान के।
1: राइट टू द ब्लॉक ऑफ शेफाली वर्मा, शी स्टार्टेड वेरी वेल इनटू नादीन डी क्लार्क, वंस अगेन अ गुड बॉल, शी कैन ओनली टर्न इट राउंड द कॉर्नर। नादीन डी क्लार्क इन सच सिचुएशंस कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस, बट शी इज नॉट बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग आफ्टर द बॉलिंग। शी जस्ट फेल्ड 2 डिलीवरीज, बट बोथ दोज हैव बीन बोल्ड ब्यूटिफुली by Shefali Verma. The first one right in the block hold, the other one also almost close out there, not allowing Nadine de Klerk to get right under it. 16.3 overs, 123 for 3, 36 now needed of 21. The required run rate is 10.3.

0: free now. Got above 10 and over. Shafali one more short in length. That's stalked over the bowler's head. That'll go one bounce to the side screen for four. The umpire having a look at that. She probably wants to see whether she's got the distance on that. Is it six or four? So we'll wait for the final decision at six runs.
1: ये लगा आभा का छक्का
2: और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 129 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर मार्जन कप एक बेहतरीन पारी खेलती हुई अगली बॉल और उसे उठाकर मारने की कोशिश और यह कैच छूट गया उनके हाथ से हालांकि कोशिश जरूर करी गई थी लेकिन एक आसान सा कैच निकलता हुआ हाथ से आज फील्डिंग में वो जान वो मुस्तैदी नहीं दिखाई देगी ये एक सीधा कैच था रेगुलेशन कैच नाकामयाब रहे फील्डर और अगली गेंद उसे हल्का सा पुश भर किया कवर्स की तरफ कोई स्कोर नहीं मार्जन कैप 66 पर दूसरा जीवनदान उन्हें मिलता हुआ और ये कितना कीमती साबित होगा कितना कीमती साबित होगा इस मैच के कंटेस्ट को देखते हुए क्या साउथ अफ्रीका इस छूटे हुए कैच की बदौलत इस मैच को जीतेगी और क्या भारत वापसी करने की कोशिश करेगा ये कैच आराम से उनके हाथ में आया था लेकिन छटक कर बाहर जाता हुआ
0: मर्जन कैप ड्रॉप्ड ऑन 25 एंड 65 ऑन बोथ ओकेशंस बाय राधा यादव हु इज वन ऑफ द बेटर फील्डर्स इन द इंडियन स्क्वाड सो बिट ऑफ एन आयरनी देयर But the first one, I would say, was a very good effort by Radha Yadav. The second one certainly should have been taken. Shree Channi now, this time to Kapp. And Kapp has drilled it down to long off to Shafali Verma for a run. This is going to be a very crucial over because Shree Channi has bowled so well prior to this. Just 15 runs, you know, three overs and two wickets. So this will be a crucial over. 28 needed of 17. If they get good number of runs in this over, then they could push it through South Africa. Round the wicket now. Shree Channi. That's fetched from outside off and slower through the air. The bat went through first. The ball followed after that. And should be leg byes there as it ricochets down to the offside to point. Yes, leg by signal by the umpire. And Marizan Kapp is 67 or 41, 133. For three now, two deliveries is over gone. Channi from round the wicket, a touch short to land, and they go out for the peel. Richard Gales goes out for a stumping. We'll have to wait and watch. What's the final decision? No, I think very clearly the umpire says no. I've got the verdict, and it's 26 of 15 needed then.
2: 133 तीन खिलाड़ी के नुकसान पर मार्जन कैप 66 पर खेल रही है और नादीन डक्लाक जो अभी अभी आई हैं उन्होंने पांच गेंदों का सामना किया है अभी तक एक रन बनाया पूरी तरह से छकाया था इस बॉल पर श्री चरनी ने और अपने इस ओवर की अगली गेंद और इसे इनसाइड आउट मारा है कवर्स बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए
1: ये लगा आभा का चौका
0: Beautifully played. A boundary coming at a very crucial stage. Inside out. Over the infield. Pummeled away. Down to the cover boundary for four. And they get four runs at a crucial stage to the South Africans. 22 of 14 needed. Shree Channi to De Klerk now. This time she's bowled it. Clean bowled. She was trying to play the scoop. Fetch it from outside off. Over fine leg and the ball coming much slower off the wicket and going and disturbing the furniture. Once again, Shree Channi gets India a crucial wicket and that's the dangerous Nadine de Klerk. South Africa now 137 for 4.
2: 137 चार रन चार खिलाड़ी के आउट होने के बाद और अभी अभी आउट होकर गई हैं नादीन डी क्लर्क जो उसे स्कूप मारना चाहती थी गेंद विकेट टू विकेट कर दी थी श्री चन्नी और उसका फायदा उन्हें मिला बोल्ड किया गया सात गेंदें खेली थी हालांकि पिछली बॉल पे उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव मारा था इनसाइड आउट निकलकर चार रन के लिए लेकिन श्री चन्नी ने अपनी लाइन को सीधा रखा विकेट टू विकेट जो क्रिकेट के बेसिक्स हैं उसको फॉलो किया और

0: नतीजा एक अच्छी विकेट उनके नाम पर आती हुई, अब ट्रेन क्लोई ट्रेन विकेट पर आती हुई अगले बल्लेबाज के रूप में, और मैरिसन कप एक छोर संभाले हुए सट सट के अपने स्कोर पर 41 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, 13 बॉलों में 22 रन चाहिए। आशीष चन्नी अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद के साथ बॉलिंग मार्ग पर और सामने ट्रायन तैयार, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और एक अच्छा शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Went outside the option for a change by Shi Cherny and Chloe Trine rocking onto that back foot, punching it through that arc of the offside, through to the cover boundary for four. Once again, they managed to get a boundary of the last ball, a very crucial boundary in the context of the game. Now, two overs remaining and required run rate is under 10 back. It's 9 runs per over. What is needed is 18 of 12 deliveries. Now they will fancy themselves as well, the South Africans. Cap is on strike. See, 67 of 41. This will be a very important over. Shefali is done. Shri Chandni is done. Deepti has got one over left. Deepti Sharma, in all probability, 18 of 12. Now Deepti Sharma has got loads and loads of experience in these kind of situations, in the death overs. See, generally bowls. But I tell you what, at the other end is Marizan Kapp, who's also got loads and loads of experience, and she knows how to hold her nerve in these kind of situations. She's firmly entrenched there, 67 of 41. And here is Deepti Sharma from Idol Islam. Now this time it's bubbled away down to backward square leg, straight to Prema Rawat for a single, 17 of 11. India won't mind the singles. What they don't want is boundaries. From South Africa's perspective, couple of boundaries here and they'll be in the driver's seat. What India will want Deepti Sharma to do is, can she get two or three good balls here? Give just the one, maybe two, not the boundaries, not the over boundary. Deepti Sharma, this time Chloe Trine, that's a good ball kept low after pitching, and she's pulled it away once again to Jemima Rodrigues. So just the two singles and two deliveries.
0: Deepti Sharma apna pura ka pura jo experience hai unke paas, jo tajurba hai, wo usko jhokti hui aur koshish ye kar rahi hai ki is over mein koi loose ball na kari jaye, koi aisi ball na di jaye jisse aaram se koi stroke lage aur 4 run mile, aur unka sabse bada focus rahega Marizan Kapp. Ye gend aur use utha ke mara Marizan Kapp ne, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन।
1: ये लगा आभा का छक्का।
2: गिवन द बॉल अ लॉट ऑफ एयर इन द स्लॉट इन द आर्क, इट वेंट आउट ऑफ द पार्क, दैट्स व्हाट Marizan Kapp से 67 मीटर बाउंड्री, एंड आई टेल यू व्हाट, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल राउंडर्स विमेन्स क्रिकेट हैज एवर सीन इज taking us South Africa within a couple of strokes of victory. 10 needed of 9. Couple of boundaries from here. 1-6 will take South Africa home. What an innings this has been by Marizan Kapp. 74. And that ball from Deepti Sharma, lot of air. She fetched it in the slot as well, as I said. And hard and high, bent over mid-wicket for a 6. Now the Indians, lot of discussions happening, because they know that this is within South Africa's grasp. 10 needed of 9. And Marizan Kapp is on strike, more importantly. Deepti Sharma to Marizan Kapp on the leg stump. She once again pummeled it. This time it'll be cut off by Jemima Rodrigues on the mid-wicket boundary. So 9 needed of 8.
0: 150 run, 4 khiladi ke nuksan par, 18.4 overs ke baad आखिरी 50 रन 26 गेंदों में साउथ अफ्रीका ने बनाए, पहले 50 56 गेंदों में, फिर 50 30 गेंदों में और आखिरी 50 26 गेंदों में बनाए हैं साउथ अफ्रीका में, और इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो Marizan Kapp का है, जो इस समय 75 रन पर खेल रही है 44 गेंदों का सामना करते हुए। दीप्ति शर्मा अपने ओवर की अगली गेंद, पांचवी गेंद ऑफ स्टंप पे बाहर, उसको निकलकर लेग स्टंप के बाहर निकलकर मारने की कोशिश की, कामयाब हुई, एक रन चुनाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि अब सामना करेंगी Marizan Kapp इस ओवर की।

0: आखिरी गेंद का 151 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 159 रन बनाने हैं साउथ अफ्रीका को ग्रुप ए के इस तीसरे मैच को अपने नाम करने के लिए। लेग स्टंप के बाहर गए और उसे उठा के मारा है 6 रन। मॉरिसन कॉब के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर।
1: ये लगा आभा का छक्का।
2: मॉरिसन कॉब, व्हाट एन इनिंग्स हैव यू प्लेड ओवर हियर। 81 नॉट आउट ऑफ 45 डिलीवरीज एंड 7 फोर्स 4 सिक्सेस। What an innings in such a crucial game. Holds the nerve. That one soaring over mid-wicket for 6. And now, South Africa, just 2 needed off the last over. And this must be South Africa's game without any doubt. 81 of 45. Marizan Kapp has played like a champion that she's been. And the South African dressing room now wears a very happy look. This was a crucial game for them, and boy oh boy, have they now taken it to victory, on the doorstep of victory over here literally. 2 of 6, this is South Africa's game for sure. Chloe Tryon will take strike to the first ball of the last over, and the first ball of the last over, that's been steered away to the vacant slip region, might well carry down to the third mid boundary for 4. South Africa wins. Laura Wolfson is a happy captain. This is a magnificent win for South Africa. And South Africa have won this crucial game, beating India by 6 wickets at Old Trafford, Manchester. A magnificent victory in a crucial game in the ICC Women's T20 Cricket World Cup. So South Africa win by 6 wickets. And please stay back for our sponsored special program, Player of the Match.
0: 158 रन सात खिलाड़ी के नुकसान पर भारत ने बनाए थे पहले अपने 20 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए और पीछा करते हुए 19.1 ओवर की समाप्ति के बाद 161 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर मॉरिसन कॉब ने बनाए 81 रन और बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और ये 2 अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए।